मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर, आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। आज रविवार है, शक संमत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:55 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मित्रों कहते हैं कि कुछ चीजें पास जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि के पास जाने से गर्माहट, बर्फ के पास जाने से शीतलता और गुलाब के पास जाने से सुगंध अपने आप मिल जाती है। बिल्कुल उसी तरह ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है।

वंदना कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कहते हैं कि एक दिव्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उससे यही प्रार्थना है कि वो सबका भला करे, सबको सुखी रखे, सबको निरोग रखे और सभी को

मैं तो बारिश की बूंदें चाहे कितनी ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इससे प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होते रहना चाहिए।

साथियों, जीवन सरल तभी होगा जब आप सीख जाएंगे कि अपनाना क्या है, बदलना क्या है और छोड़ना क्या है।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: आज से लगभग 500 वर्ष पहले एक महान संत हुए जिनका नाम कबीर महान है। भारत में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम के आगे महान लगा है। कबीर जी ने समाज को ध्यान की दो पद्धतियां दी, जिनमें से एक का नाम तत्वज्ञान है और दूसरी का नाम पारख ज्ञान है।

0: तत्व ज्ञान के अंतर्गत ध्यान की चार विधियां हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। इस तत्व ज्ञान का प्रतीक, इसका परिचायक सांथिया है, जो हम सब लोग अपने घरों के अंदर दीवारों पर या घर के मुख्य द्वारों पर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सांथिया बनाता है, वह व्यक्ति बताना चाहता है कि मैं तत्व ज्ञान की चारों विधियों को जानने वालों में से हूँ। दूसरा प्रतीक, हम अपने घरों के मुख्य द्वारों पर शुभ और लाभ भी लिखते हैं, जिसका मतलब है हम उन लोगों में से हैं जो शुभ करते हैं और लाभ पाते हैं। शुभ का अर्थ है अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से अच्छे कार्य करना, और लाभ का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति। अब मैं तत्वज्ञान की उन चारों विधियों के नाम बता दूं। पहली विधि, जिसका नाम है ऐजपाजाप, दूसरी विधि का नाम है खेचरी मुद्रा, इस विधि को अमृत पान विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि, जिसका नाम है अनहद नाद विधि, और चौथी विधि, जिसका नाम है ज्योतिर्मय स्वरूप। सबसे पहले मैं ऐजपा जाप के बारे में थोड़ा बता दूं। ऐजपा जाप का अर्थ है एक ऐसा सुमिरन, एक ऐसा जाप जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने आप, अपने आप हमारी श्वास भीतर जाती है और अपने आप बाहर आती है। यह एक प्रकार का झूला है जो बाहर वाले छोर से भीतर वाले छोर तक जाता है और फिर भीतर वाले छोर से बाहर वाले छोर तक आता है। यह एक ऐसी माला है जो हमारे घट में निरंतर फिरती रहती है। जब श्वास भीतर जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, और जब सांस बाहर आता है तो भी एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार आते जाते श्वास की ध्वनि से एक शब्द, एक नाम निर्मित होता है। उस नाम में ध्यान लगाए रखना ही ऐजपा जाप है, यानी अपने मन को क्षण प्रतिक्षण अपने श्वास के आवागमन के प्रति, आवागमन की जानकारी पर लगाए रखना ही ऐजपा जाप है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने इस पे बड़े दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। श्वास श्वास हरि नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लो लाए, बिन जीवा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। हंसा सोहंग तार कर सुरती मकरिया पोए, उतरी उतरी फिर चढ़े सहजे सुमिरन होए। सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। ढूंढ कर पकड़ा नाम को जीभ होट के बीच, ऐ जपा जाप होवे स्वयं धोवे मानस कीच। आप ही रसना जप करे मन में माने मोद, व्रति वश होवे तभी हो संकल्प निरोध।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:50 हुए हैं।

0: लीजिए, आप सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर खेती हर आवाज के कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी लवणीय व क्षारीय भूमि में हरी खाद का महत्व। शाम 7 चौपाल कार्यक्रम में किसान भाई जानकारी सुनेंगे धान की उन्नत किस्मों के बारे में, साथ ही भेड़ व बकरी की देसी नस्लों के बारे में भी बताया जाएगा। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम होगा मानस गान, आप सुनेंगे कड़ी संख्या 253। 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम के आज के विषय रहेंगे खेलों में अनुशासन, संगति का प्रभाव और पेड़ लगाएं जीवन बचाएं। प्रातः 9:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जिसमें आज आप संगीतकार राजेश रोशन के संगीतबद्ध की फिल्मी नगमे सुनेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे आज 10:00। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाए जाएंगे दिन में 11:00। कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत दिन में 12:05 पर। दोपहर की सभा में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और शाम 7:45 पर भी फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8:00। आज 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे गर्मी की छुट्टियों में मसूरी की सैर, जानेंगे राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में, जानकारी दी जाएगी आंवले के गुणों पर और कुछ ब्यूटी टिप्स भी महिलाओं को बताए जाएंगे। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:00 युवा साथियों के लिए आज चर्चा के विषय रहेंगे हरियालो राजस्थान अभियान, वृक्ष लगाएं धरती बचाएं, जीवन में संगीत के महत्व के बारे में चर्चा होगी और विषय रहेगा सद्भावना, साथ ही जानेंगे आज के इतिहास को। 3:00 आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सराय की आप सुना करते हैं शाम 6:05 पर। आज रात 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोप हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में होगा। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में कुछ भजन और रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गजलें सुनवाई जाएंगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 6:55 हुए हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले संस्कृत में होंगे और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते।

0: अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही

0: प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security.

रासायनिक उर्वरक माटी में पोषक तत्वों का मुख्य भंडार हुए। किसान भाइयों, भारत में खाद्यान्न उत्पादन का सागे सूक्ष्म तत्वीय उर्वरकों का प्रयोग भी लगातार बढ़ रहे है। कई वैज्ञानिकों द्वारा जगह अनुसंधान कराया गया है, बंगे हिसाब छू अपनी भारतीय माटी में जिंक, आयरन, मैंगनीज, तांबा, बोरोनगी क्रम के हिसाब छू 49, 12, 4, 3 और 33% की कमी है। किसान भाइयों, धीरे धीरे आ कमी बढ़ती जान लग रही है। आ तत्वों में भी अपनी माटी में जस्ता की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई है। इनको मोटो सो कारण वही है कि कई साल से माटी में सघन और लगातार खेती होने से माटी में उपस्थित जरूरी पोषक तत्व तो धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। आपने अठे किसान भाई लोग जमीन ने आराम करण भी कौन देवे, इन वास्ते ही तो अठे की भूमि में अब अनुपजाऊ की श्रेणी में आवन लाग रही है। बार बार कृषि वैज्ञानिक आई बात के वह कि फसल चक्र अपनाना जरूरी है। भूमि ने 2-4 साल में एक बार खाली जरूर रखनी चाहिए, इंशु भूमि ने आराम मिले और भूमि ज़्यादा उपजाऊ बने। अब बात करें कि सूक्ष्म तत्व होवे किस है, तो भाई लोगों, लोहा, मैंगनी, जस्ता, तांबा, बोरोन, क्लोरीन, निकिल ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व होवे। आ तत्वों की पौधा ने बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़े, पर माटी में आ तत्वों को होनो भी जरूरी है। इन वास्ते आने सूक्ष्म पोषक तत्व या गौण तत्व के वहाँ, लेकिन ये तत्व अपनी माटी का मुख्य पोषक तत्वों की तरह बहुत महत्व रख है। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसा रासायनिक तत्व है किसान भाइयों, जका की पौधा ने जीवित रखने और पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े। पौधे की उपापचय क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होवे। जका पौधा का ऊतक नष्ट हो जाए बाने सुधार करने को काम ये सूक्ष्म पोषक तत्व ही करे। भाई लोगों, अब बात करें जे फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाए तो बिंगा लक्षण किसा होवे और आपने के उपाय बिंगो करनो चाहिए। जे अपनी फसल में बोरोन की कमी है तो ऊपर की पत्तियां को रंग हल्को हो जाए। शुरुआत में पत्ती का आधार को रंग हल्को होवे और आखिर में ऊपर की पत्तियां सूख जाए। इनके अलावा नुई पत्तियां गुच्छा के रूप में लागनी शुरू हो जाए। इनके लक्षण में पौधे का डंठल, तनों और फल फटना शुरू हो जाए। इनके वास्ते आपने बोरोन सूक्ष्म तत्व की कमी दूर करने का उपाय करना चाहिए। किसान भाइयों, जस्ता यानी जिंक की आवश्यकता पौधे में इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण वास्ते जरूरी हो है, क्योंकि जिंक पौधे में अलग अलग धात्विक एंजाइमों को मुख्य घटक हो है। वो पौधे की विभिन्न उपापचक क्रियाओं के वास्ते जरूरी है। जिंक की कमी का भी कई लक्षण होवे, जिया पत्तियां को अंतःशीरीय पर्ण हरिमा निमा यानी पत्ती को रंग हल्को हो जाए, लेकिन शिरावां से लागेड़ो भाग हरियो रेवे। पत्तियां छोटी और मुड़ेड़ी दिखाई देने लग जाए। सब्जी वाली फसलों में पत्तियां को रंग असामान्य दिखाई देवे। पत्तियां छोटी हो जाए और चित्तीदार, असाधारण मुड़ेड़ी और रंगहीन दिखाई देवन लग जाए। इनकी कमी दूर करने वास्ते जस्ते की विभिन्न अकार्बनिक स्रोता में जिंक सल्फेट, हेप्टा हाइड्रेट, जिका गमा 20-21% जस्ता की मात्रा होवे और एक बढ़िया स्रोत है। किसान भाइयों, वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाए। इनके अलावा वो पानी में घुलनशील भी होवे। इनके सागे सागे मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट 33% दोनों ही समान रूप से जिंक की कमी वाली माटी में प्रयोग आप कर सका। इनके अलावा गोबर की खाद 10-15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि में मिला देवा तो भी इनकी पूर्ति आप कर सका। यही लो तत्व भी भूमि और फसल के वास्ते बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, लो तत्व हरित लवक के निर्माण और रख रखाव के लिए आवश्यक है। लो तत्व प्रोटीन की उपापचय की क्रिया में मुख्य सहायक हुए है। इनकी कमी गए लक्षणा की बात करा तो नई पत्तियां पर अंतःशीरीय क्लोरोसिस दिखाई देने लग जाए और सहसुपेली पत्तियाँ जबकि नुई पत्तियाँ हैं वे सफ़ेद हो जाए। लो तत्व भी मैग्नीज की तरह समान पर्ण हरिम उत्पादन में भाग लिए। लोह की कमी सामान्य क्षारीय और ज़्यादा चूना युक्त माटी में दिखाई देवे। इन वास्ते पौधा में 1-2% फेरस सल्फेट को बिना उदासीनीकरण वाले विलयन को छिड़काव करने पर इनकी कमी आप दूर कर सका। अब मैग्नीज तत्व की बात करें तो किसान भाइयों, मैग्नीज पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज के बढ़ने में सहायक होवे। इनकी कमी का लक्षण आपने फसल में नई पत्तियाँ की शिरावां में क्लोरोसिस दिखाई देने लग जाए। शिरावां से लगे भाग हरे हुए जको बाद में सुरमई रंग हो जाए। इनकी कमी दूर करने वास्ते आपने नज़दीकी विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करनी है। इन तरह ही कॉपर क्लोरीन की कमी भी फसल ने और माटी ने खराब कर सके, आंगी पूर्ति भी टाइम टाइम पर करनी चाहिए।
इंगलावा आपा कंपोस्ट

0: खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद और फसल चक्र को भी ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जैविक खादों को आप ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना जरूरी है, जिया गोबर की खाद। भाई लोगों, घरेलू पशु जिया गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आगे मलमूत्र, गोबर शू आ खाद आप तैयार कर सका। भाई लोगों, गोबर की खाद में 0.5 से 1% नत्रजन, 0.4 से 0.8% फास्फोरस, 0.5 से 1.3% तक पोटाश, 40 PPM जस्तो, 2.8 PPM तांबो और यहाँ ही लोहा, मैंगनीज जैसा तत्व भरपूर मात्रा में गोबर की खाद में मौजूद होवे। जे किसान भाइयों आपा खेत में गोबर की खाद को प्रयोग करा तो इंशु माटी की भौतिक और रासायनिक और जैविक संरचना में सुधार कर सका। अब बात करा आपा कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद तैयार करण खातर खरपतवार, फसल अवशेष, पशुआंगो बच्चेड़ो चारो, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, कूड़ो कचरो और दूसरों कार्बनिक कचरो जका ने सड़ा के कंपोस्ट खाद तैयार कर सका। इनमें 0.4 से 0.8% तक नत्रजन, 0.3 से 0.6% तक फास्फोरस और 0.7 से 1% तक पोटाश हो। किसान भाइयों, कंपोस्ट खाद आपने जितनी प्रति बीघा अपना कृषि वैज्ञानिक बतावे बिंगा हिसाब से खेत में बुवाई से 3 से 4 सप्ताह पहली नागे माटी में छितरिया मिला देनी चाहिए ताकि अपनी भूमि की उर्वरा ताकत भी बढ़िया बनी रहे और टेम सारू नाखेड़ी खाद से अपनी फसल भी बढ़िया होवे। इन वास्ते भाई लोगों, खेत में जीवांशों की मात्रा बनाए रखने खातर अपन कंपोस्ट खाद तैयार करके खेत में जरूर डालनी चाहिए। इनके अलावा भाई लोगों, जे आप हरी खाद खेत में ही तैयार करके फिर अच्छी तरह खेत की जुताई कर देशा तो माटी की अल्टा पलटी से खाद बढ़िया तरीका से सड़गे तैयार हो जाएगी। हरी खाद तैयार करने में ज़्यादा खेचड़ भी कौन करनी पड़े और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी कौन पड़े। किसान भाइयों, फसल चक्र में हरी खाद की बीजांत भी आपने अपनानी चाहिए। इनमें आप ढेंचो, सनई, ग्वार, चना आने मिला के बीजांत कर देवा और बीज बढ़ने से पहली 1-2 पानी लगाना है। इनके बाद में जमीन से जब पौधा ऊपर तक आ जाए यानी जमीन ने जब अच्छी तरह ढक लेवे तो ट्रैक्टर की सहायता से तोई, हल या रूटावेटर से अच्छी तरह जुताई कर देवा ताकि हरी खाद का अवशेष माटी में बढ़िया तरीका से मिल जावे। इन तरह से आप अपने खेत में फसल चक्र प्रणांता तक हरी खाद तैयार कर सका और रासायनिक खादा में होवन आलो फालतू खर्चों आप बचा सका। इनके अलावा किसान भाइयों, अपनी जमीन में रासायनिक उर्वरक ना नागे गोबर की ऐसी सड़ी गली खाद ना खा, कंपोस्ट खाद भी तैयार करके खेत में नाख सका, वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार करके इस्तेमाल कर सका ताकि जमीन की ताकत लंबे टाइम तक बनी रहे। जिस अपनी फसल में अच्छी उर्वरा शक्ति मिलेगी, जमीन उपजाऊ बनेगी, अच्छी पैदावार और अच्छी आमदन होगी। पर किसान भाइयों, पानी धानी को भी पूरा ध्यान रखना है। कम पानी वाली फसलों को ही चुनाव करना है ताकि आप खेती वाले पानी की बचत कर सका। इनका सागे सागे आप फंवारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि को इस्तेमाल भी कर सका जिस जरूरत के हिसाब से फसल ने पानी मिलेगा और पानी की बचत भी हो सी। आ सगली बातों को आप जो ध्यान रखा तो आप अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार ले सका। पर अब मैं खेत का नहीं चालू सा राम राम सा राम राम।
1: फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। खेती नमस्ते कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 किलोमीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुने रामचरित मानस पर आधारित मानस गान की कड़ी संख्या 253। आज गायक स्वर है रविंद्र साठे, कविता कृष्णमूर्ति और उत्तरा केलकर के।

का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

अभी आप मानस गान की कड़ी संख्या 253 सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुने सुप्रभात। सभी सुनने वालों को आज नमस्कार संजय बैद की ओर से। मित्रों, हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में खेल अपना प्रभाव डालते हैं। लगभग हर व्यक्ति की किसी न किसी खेल में रुचि रहती है, और यदि आपकी किसी खेल में रुचि नहीं भी है तो भी खेलों का जो नियम है, जो खेलों का अनुशासन है, वो तो हमारे जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है ही। बिना किसी अनुशासन के ना तो खेल की कल्पना की जा सकती है और ना ही जीवन की। जीवन में यदि अनुशासन नहीं है तो वो जीवन

बिखरने लगता है, खंडित होने लगता है। जिस तरह से खेलों में कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक खिलाड़ी को करना होता है, उसी तरह वास्तविक जीवन में भी अनेक ऐसे नियम हैं जो शायद सरकार ने तय किए हों, समाज ने तय किए हों, या हमारे कानून ने बनाए हों, हमें उनका हर समय पालन करना ही होता है। नियमों की अनुपालना से हमें अनेक तरह के कष्ट हो सकते हैं, जुर्माना लग सकता है, समाज में उपहास का हम पात्र बन सकते हैं, या फिर कानून का उल्लंघन पर जेल भी हो सकती है। खेल हमें सिखाते हैं कि किस तरह से समय का प्रबंधन करें, क्योंकि प्रत्येक खेल का एक समय निश्चित होता है और उसी समय अवधि में उस खेल की हार जीत का फैसला होता है। एक पल की त्रुटि भी एक खिलाड़ी को उसके खेल से बाहर कर सकती है। इसी तरह से यदि हम भी अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं करें, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर ऑफिस जाना, यानी हर समय पर अपना काम निश्चित तरीके से समयबद्ध अवधि में करना, ये भी हमें खेलों से सीखने को मिलता है। खेल हमें टीम भावना और सहयोग भी सिखाते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी खेल हैं किसी न किसी टीम भावना से ही खेले जाते हैं। एक अकेला खिलाड़ी कभी भी किसी टीम को नहीं जिता सकता। एक मैच के लिए एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो दूसरे मैच में वो खिलाड़ी फ्लॉप भी हो सकता है। यानी कोई भी खेल वो टीम भावना के साथ खेला जाता है, और हमारे वास्तविक जीवन में भी यदि हम चाहें कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा तो वो संभव नहीं है। चाहे वो समाज हो, कोई संस्था हो, कोई कार्यालय हो, प्रत्येक कार्य में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो टीम भावना से ही काम करने से लक्ष्य हासिल होगा। खेल हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम हार और जीत को समान रूप से देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी हमेशा नहीं जीत सकता। उसी तरह से हम भी जीवन में हर मकाम हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो बाजार हो, शेयर मार्केट हो, आपका बिजनेस हो, या अन्य कोई कार्य। हर व्यक्ति को हर कार्य में हरदम सफलता नहीं मिलती, अनेक बार असफलताओं का मुख भी देखना पड़ता है। लेकिन यदि आप में जज्बा है, कार्य के प्रति आपकी लगन है, और थोड़ा सा भाग्य यदि आपका साथ दे, तो पुनः आप अपनी हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं। खेलों का अनुशासन हमें सिखाता है कि हम जीवन में धैर्य रखें और निरंतरता को बनाए रखें। एक बार हार के बाद यदि खिलाड़ी ये सोच ले कि वो कभी जीत नहीं पाएगा तो उसका खेल का जो कैरियर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने किसी भी कार्य में यदि असफलता मिलती है, हार का मुंह देखना पड़ता है, तो दुगने जोश के साथ हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लग जाएं, तभी हम इस जीवन की जो भी विसंगतियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनसे पार पा सकते हैं। खेल हमारे जीवन का हिस्सा है, और खेलों से जो अनुशासन हमें सीखने को मिलता है वो भी हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है।

जाती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम अपनी संगत का ध्यान रखें, अच्छे सुधी जनों की संगत करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, उनके विचार सुनें, उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें, तभी आपका जो जीवन है वो उच्च बन सकता है, आप आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं, समाज में आपकी जो साख है वो बनी रह सकती है। लेकिन यदि आपने बुरे लोगों की संगत कर ली तो एक न एक दिन उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। हंस और कौवे की कहानी वो आपने सुनी होगी। एक शिकारी शिकार करते करते किसी जंगल में जा रहा था। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। विश्राम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए उसके पत्तों से भी कुछ रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी पास में से एक हंस वहां से गुजरा। जब उसने देखा कि उस शिकारी पर धूप की तेज किरणें पड़ रही हैं जो उसके आराम में खलल डाल रही हैं, तो वो चूंकि शुद्ध विचार वाला हंस था, अपने शरीर की तरह वो धवल था, मन उसका निर्मल था, वो पेड़ के ऊपर अपने इस तरह से पंख फैलाकर बैठ गया ताकि जो आने वाली धूप है उसको उसके पंख रोक सकें और शिकारी पर धूप का साया ना पड़े। लेटे लेटे काफी देर हो गई। कुछ देर बाद एक कौवा आके हंस के बगल में बैठ गया और बैठते ही उसने अपनी जो विष्ठा है वो करी जो उस शिकारी के मुंह पर गिरी। विष्ठा करते ही कौवा वहां से उड़ गया और जब शिकारी की आंख खुली उसने देखा कि उसके चेहरे पर विष्ठा पड़ी है और ऊपर एक हंस बैठा है। उसने आव देखने ताव अपना धनुष बाण निकाला और उस हंस पर अपना तीर चला दिया। तीर लगते ही हंस नीचे गिरा और मरते मरते हुए उस हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, आपको छांव दे रहा था ताकि आप इस तेज धूप से बच सकें और आपने मुझ पर ही तीर चला दिया, इसमें भला मेरा क्या दोष था। उस शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म है वो उच्च परिवार में हुआ है, आपकी सोच आपके तन की ही तरह सुंदर है, आपके संस्कार बिल्कुल शुद्ध हैं और आप एक अच्छी भावना के साथ पेड़ पर बैठकर मेरे लिए छांव कर रहे थे, लेकिन आपने एक गलती कर दी। जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने आपको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ रखें, दुर्जनों के साथ कभी भी संगत न करें। यदि आपका संग अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो निर्विघ्न होगा, सुखद होगा, सफल होगा।

मित्रों, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में सबसे ज्यादा जो हमें सुकून देती है वो है एक पेड़ की ठंडी छांव। चाहे आप किसी कूलर के आगे बैठें या किसी एयर कंडीशनिंग ऑफिस में बैठें, लेकिन हरे भरे उपवन में एक पेड़ के नीचे

जो शीतलता, जो आराम हमारे तन को और हमारे मन को मिलता है, उसकी तुलना इन बाह्य चीजों से नहीं की जा सकती। ये हमें क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्रकृति की अनुपम भेंट पेड़ हैं, उनका मुकाबला कोई भी कृत्रिम वस्तु नहीं कर सकती। लेकिन आज के इस दौर में विकास के नाम पर पेड़ों का जो कटाव है, बड़ी तीव्र गति के साथ हो रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या के लिए मकान बनाने के लिए पेड़ कट रहे हैं, नई नई कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं जिनके किनारे लगे पेड़ कट रहे हैं, सौर ऊर्जा के बड़े बड़े हब विकसित हो रहे हैं और उसकी कीमत भी पेड़ों को चुकानी पड़ रही है। सड़कें चौड़ी होती हैं और खामियां भुगतते हैं उसके आसपास लगे पेड़। कुछ ही समय बाद मानसून का मौसम आने वाला है और यदि हमारे आसपास कहीं हमें खाली स्थान ऐसा मिलता है जहां हम पेड़ लगा सकें और पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें, उसे हम समय समय पर पानी दे सकें, तो इससे बड़ा प्रकृति को आपका कोई भी उपहार हो नहीं सकता। प्रकृति ने जो हम पर उपकार किए हैं उसकी कीमत तो नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन कुछ पेड़ लगाकर अपने दायित्व को हम जरूर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। हरियाली हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यह हमें प्राणवायु देती हैं और ऑक्सीजन के बिना जिस तरह से एक पल भी इंसान या कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए जो बिना पैसे के मुफ्त में जो प्राणवायु मिलती है वो हमारे लिए पेड़ ही देते हैं। एक तरफ ये घातक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, दूसरी ओर ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। पेड़ अपने लंबे जीवन काल में कितना फायदा हमें दे सकता है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और तो और, पेड़ सूख जाने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ दे जाता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर तुम्हारे घर के चौखट खिड़कियां दे जाएगा, जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे तब तुम्हें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा, जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक, वो शजर उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा, आप हीरे खोजते रहना भले माटी तले, वो परिंदों के घरों को पत्तियां दे जाएगा।

0: अभी आपने एक कार्यक्रम सुना सुप्रभात। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली स्टूडियो ले चलें।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और

0: राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स

0: पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers Meet will be

और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में भी आप कुछ भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की

0: अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगे। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
3: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन।

0: लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 9:10 हो चुके हैं। आइए सुने राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार हैं सुरजाराम भाट।

इनके बीच में पेड़ कदम राई, जिसके बीच में पेड़ कदम रो।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम में सूरजाराम भाट की गाई राजस्थानी लोक रचनाएं सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के एक सूरतगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रोग्राम सुनिए फिल्म संगीत। सभी सुनने वालों की सेवा में आज नमस्कार संजय बैद की ओर से। दोस्तों आज 24 मई का दिन और आज के दिन ऐसे संगीतकार का जन्म हुआ था जिन्हें संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता रोशनलाल नागराथ जिन्हें हम रोशन के नाम से जानते हैं और उनकी माता गायिका ईरा नागराथ आप पहचान चुके हैं। हम बात कर रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन की। 1953 को बॉम्बे में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही चूंकि संगीत उनके खून में था उन्होंने अपनी माता से संगीत की दीक्षा ली क्योंकि बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ चुका था। उनकी मां ईरा रोशन फैज अहमद खान के साथ संगीत रिहर्सल करती थी और उसी दौरान राजेश रोशन को भी उन्होंने संगीत की बारीकियां सिखाई। उसके बाद राजेश रोशन ने मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी संगीत की ट्रेनिंग ली। बचपन में ही राजेश रोशन में संगीत की एक विलक्षण प्रतिभा थी। जब राजेश रोशन 10 साल के थे उनके पिता रोशन मन्ना डे मोहम्मद रफी आशा भोंसले के साथ फिल्म बरसात की रात की जो कव्वाली थी इश्क इश्क उसकी रिहर्सल कर रहे थे। साहिर लुधियानवी के गीतकार थे और इस धुन को लेकर साहिर को रोशन को थोड़ा संशय था और उन्होंने राजेश को अपने पास बुलाया और उन्हें धुन सुनाई और जब राजेश रोशन ने उस धुन को पास किया तब उस गीत की रिकॉर्डिंग हो पाई।

खैर राजेश रोशन ने कितनी ही फिल्मों में अमर संगीत दिया, पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं उनकी सुपरहिट फिल्म देश परदेश से। ये वो दौर था जब उनकी संगीत कैरियर की शुरुआत कुंवारा बाप फिल्म से हुई थी, जो महमूद की फिल्म थी, और उसका भी एक गीत प्रसिद्ध हुआ था जो आपने सुना होगा, सज रही माँ अमर गोटे पे। ये गीत हिट हुआ और इसी दौरान राजेश रोशन ने लगातार अपनी डेब्यू फिल्म के साथ चार हिट फिल्में दी, जिसमें पहली थी कुंवारा बाप, उसके बाद देश परदेश, मनपसंद और लूटमार। देश परदेश के फिल्म के गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गीत को गाया लता मंगेशकर ने और शब्द अमित खन्ना।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अपनी पहली फिल्म कुंवारा बाप से राजेश रोशन ने संगीत में वो सफलता हासिल की कि एक साल बाद ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। 1974 में कुंवारा बाप फिल्म आई थी और सज रही फिल्म के इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने 15 किन्नरों का भी उस गीत में इस्तेमाल किया था। 1975 में उनकी एक सुपरहिट फिल्म आई थी जूली, जिसके संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला और एक साल के डेब्यू के अंदर ही ऐसा कारनामा करने वाले वो गिने चुने संगीतकारों में थे। ये गीत हम आपको सुना देते हैं जिसे गाया किशोर कुमार ने और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने।

और हम सब जानते हैं कि ये गाना कितना खूबसूरत बना। और जब भी मिस्टर नटवरलाल फिल्म का जिक्र होता है, इस गीत का जिक्र होना जरूरी भी है। गीत को इसको आवाज़ दी अमिताभ बच्चन के साथ मास्टर रवि और साथियों ने, और गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए यही गीत सुनते हैं।

सुपरस्टार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना जो पहला गीत गाया था वो राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में ही गाया था। ये फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल और गीत आप जानते हैं कि कौन सा है। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो राजेश रोशन बताते हैं कि इस गीत की शूटिंग के दौरान बच्चन साहब ने मुझे बुलाकर रिहर्सल के लिए कहा, लेकिन उस दिन ये गाना फिल्म के निर्देशक को अच्छा नहीं लगा और ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया और फिर अगले दिन यह गाना बिना किसी रिहर्सल के ही रिकॉर्ड किया गया।

0: सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,
1: बोलो ना, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: आ गया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

0: राजेश रोशन पर उनके पिता के संगीत का काफी प्रभाव था, लेकिन उनका कहना था, अगर मेरा संगीत धरती है तो पापा का संगीत आसमान था। मेरे संगीत में सिर्फ लय है, लेकिन पापा के संगीत में जान थी। रोशन का पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा है। उनके बड़े भाई राकेश रोशन, जो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक निर्माता निर्देशक भी हैं, उनकी लगभग हर फिल्म में राजेश रोशन ने संगीत दिया था और लगभग हर फिल्म का जो गीत था, संगीत था, वो हिट रहा था। चलते चलते उनकी एक सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है का गीत हम आपको सुनवाते हैं। इस गीत को गाया उदित नारायण के साथ अलका याग्निक ने, शब्द रचना इब्राहिम अश्क की।
1: ओए, कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?
1: हाँ, लेकिन वेजिटेरियन।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए प्रोग्राम सुने सदा बहार नगमे। सभी सुनने वालों को नमस्कार, आज संजय बैद की ओर से। दोस्तों, आपकी फरमाइश का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। ढेरों फरमाइशें व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंच चुकी हैं और अनेकों खत भी हमें मिले हैं आपकी अलग अलग गीतों की पसंद के। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुना है। इस फिल्म का नाम है लावारिस, आवाज किशोर कुमार की, गीत को लिखा अनजान ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आप सब साथियों की हम तक पहुंची है। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी और इनके साथ है बब्बू डब्बू, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, यूथव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सहारन और सुनील पाईवाल। पलारी छत्तीसगढ़ से फरमाइश हम तक पहुंची है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन की। नथाना पंजाब से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, इनके साथ हैं सीता और गीता। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, परमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, ईवा धारनिया। ऊपरकोट मोहल्ला चोखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान नवासी और इनके परिवार के लोग। गांव बांडीवाला फाजिला पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत, बेबी गरिमा। ये पत्र हम तक पहुंचा है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत का।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत दुनिया फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार के साथ आशा भोसले ने, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने, और फरमाइश आप सब साथियों की पहुंची है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश रामचंद्र, कपिल तरड़ के साथ हिमानी जाखड़, गांव बांडीवाला फाजिला पंजाब से ओम बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत बेबी, गरिमा और क्रियांश बगड़िया, गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, हिरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत राम।

डोरीवाल, गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका मनीष सहारन, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, चक पांच एमडी पथरोड़ा श्री गंगानगर से मंगल जलागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील जलागल, हमीरी कला झुंझुनू से भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, शाहदरा दिल्ली से लिखने वाले हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, धानी लाल खान से जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, मुखराम, आरिफ, इयान, अरशद, अरमान और इनके साथी। आप सब सुने दुनिया फिल्म का ये गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दाग द फायर। इस फिल्म में सुनिए कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल को, शब्द रचना समीर की, संगीतकार हैं राजेश रोशन, पसंद आप सब साथियों की है, गांव होंडू बालोतरा से उम्मेदराम सुरेश सुरतेश गोदारा, मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, डानी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, सीमा बानो, विनोद खां, मुखराम, आरिफ, अरशद खान, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशला देवांगन, रोशन लाल। कार्यक्रम का अगला ये फरमाइश पत्र हम तक पहुंचा है गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश का। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान, इरफान और जिशान खान। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटेश, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, मेहत्रे, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय। अनूप शहर भादरा से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारी, ममता, मितू, किन्नू, अक्षय, महावीर लोहरा और इनके परिवार के लोग। ये पत्र हम तक पहुंचा है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव और आरव के साथ अर्पिता का। यह खत हम तक पहुंचा है साधु शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का। गांव आरायन से बनवारी लाल जयपाल, विमला जयपाल, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत और विक्रम। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, श्रीता ग्वानकर, प्रिंस और एकांश ग्वानकर। लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वली और कुमारी डब्ल्यू डोम। आप सब सुने दाग द फायर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है काला पत्थर। गीत को गाया लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर के लिखे गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। पसंद आप सब साथियों की है। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान, पूजा पढ़ियार। श्री गंगानगर से बजरंगला शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश शर्मा का पत्र हम तक पहुंचा है। ये पत्र हमें मिला है सरुचे श्री ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का। लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। संग्रिया से मुकुना राम और महावीर लोहरा। खंडवा सैनी मंदिर चौक से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव और ईशान सैनी। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुर किरत, गुर शब्द सिंह राहुल। सिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे। संबलपुर कांकेर से फरमाइश हम तक पहुंची है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। कुंडी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी, गर्वी ये फरमाइश हम तक पहुंची है। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। आप सब सुने काला पत्थर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हमराज से, जिसे गाया महेंद्र कपूर ने। साहिर के लिखे गीत की धुन तैयार की है संगीतकार रवि ने, पसंद आप सब साथियों की है। जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी, बबली वर्मा। गांव कल्याण मलका, जिला भटिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर, सरचून, मनिंद्र। सोनबिल कुदाली आसाम से हितेंद्र दास। गांव पहला कला, जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत, मानक उषा, बाला देवी प्रजापत। विकास कॉलोनी बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री, गौरव शाही। ये फरमाइश हम तक पहुंची है। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांत जांगड़ा की। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। कुछ पत्र भी हमें मिले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। भूचो केंचिया भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, अभिजोत। मोहला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशील, कैलाशपुरी। आरायण से रंजीत सोलंकी, परमजीत कौर, विष्णुदेव, राजवीर, रमन, जस्सू, जगवीर सोलंकी, इनके परिवार के लोग। अबोर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन का।

कामचोर फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का लगाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत की धुन तैयार की है संगीतकार राजेश रोशन ने। पसंद आप सब साथियों की है। बागपत चोहलदा से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। गांव फाजिलका से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी, टिवांशी, वाणी खेड़ा और इनके साथी जीवन सिंह बुक की। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस्ट डिकेस्टो। जैसलमेर सुल्ताना से विकास जाखड़, भावना हेमंत, तेज प्रताप, वान्या जाखड़ और अभिमन्यु। भेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत, ममता, प्रिया, नैना, हिमानी और शिवम जाखड़। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। ये पत्र हमें मिला है गांव मसीता डवाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट का। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। गिद्रभा पंजाब से मंजी तनेजा, परवीन तनेजा, पायल बेबी हिनाशा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुबैद अब्बासी। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और मदनलाल वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका और तेजल। आप सब सुनिए कामचोर फिल्म का ये गीत।

चकचुक दे BSBC कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान, अलीकांड वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत रानी, सोनू रजनी, चंडीगढ़ से धनराज भांबू, सोहन जी, चेतराम सारस्वा, राजेंद्र कासनिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, सरिता ग्वानकर, एकांश ग्वानकर, कोटा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, रामपुरा मटोरिया से मुरारीलाल शर्मा, अमन रमन, तनिषा, रवि शर्मा, सीताराम, मदनलाल और इनके परिवार के लोग, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, गोविंदपुरा नीम का थाना से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और जवाहर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े। आप सब सुनना चाहते हैं ज्वेल थीफ फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं मधुरू सुल्तानपुरी ने।

देश और साथियों ने शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पसंद आप सब साथियों की है। फ्रांसीसी राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र डूडी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर अमूरिया, अजय देव, तुषार डोली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर, जलंधर पंजाब से संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत भारत, कमल साहनी, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। गौरव अरोड़ा मोतीनगर नई दिल्ली से, कार्यक्रम का अगला फरमाइश पत्र हम तक पहुंचा है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा का, गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नवाजी शेख, दानी शेख, अमन अफरीदी, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, मंजनूगढ़ टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक, माही मल्लिक, ये पत्र हम तक पहुंचा है। डाबर तालाब लोनी से राजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का, मलोट पंजाब से कुलविंद गिल, जसवंत गिल, रमनदी, बलजिंदर गिल, दिशा मोहला और जगतार, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आप सब सुने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म 10 नंबरी से, और अपने साथी संजय बैत को आज्ञा दें। नमस्कार।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। आकाशवाणी सूरतगढ़ से मैं हूँ शोभा। हमारी इस बेहद ख़ास और सुरीली महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, आज हमारी महफिल सजी है उस अजीम फनकार के नाम जिसने अपनी कलम से जज्बातों को धड़कन दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जादुई गीतकार और मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी की। मजरू साहब मूल रूप से एक संजीदा शायर थे जिन्होंने जिगर मुरादाबादी साहब की सरपरस्ती में शायरी सीखी। जब वे फिल्मों में आए तो उन्होंने रोमांस और मस्ती को एक नया ही रंग दे दिया। उनके लिखे गीतों में जो मस्ती और चुलबुलापन था वो आज भी हमारे दिलों को झूमने पर मजबूर कर देता है। लीजिए सुनते हैं 1965 की फिल्म मेरे सनम का ये सदाबहार और थिरकने पर मजबूर कर देने वाला जादुई गाना।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों को आपने सुना। फिल्म थी मेरी सनम, गीत मजरू का था और संगीत ओपी नैयर का। कार्यक्रम का अगला गाना तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, गीत मजरू का और संगीत

0: ए मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: श्रोताओं, ये गीत महज एक गाना नहीं बल्कि मजरू की कलम, ओपी नैयर की धुन और रफ़ी और आशा का एक बेजोड़ संगम है, जो आज भी बहुत ही ताज़ा लगता है। कार्यक्रम का अगला गीत तीन देवियां फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें, मजरू का गीत और संगीत एस डी बर्मन का।
2: तो जरा ओढ़ो अहमान

0: की हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़क।
1: तीन दीवियां फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और श्रोताओं, ये था मजरू सुल्तानपुरी का जादू। तो कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं ज्वेल थीप फिल्म से। उनके गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे बेहद सरल शब्दों में जिंदगी का सबसे गहरा फलसफा बयां कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं।

0: शबनम, ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी,
0: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
1: खुदा करे ऐसी मौत जिसे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
1: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
1: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता।
0: अमीन बेहुदा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान।

श्रोताओं, आज हम सुन रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी को। भारतीय सिनेमा के एक महान और बहुमुखी गीतकार, उन्होंने हर मिजाज और हर शैली को अमर खाने दिए।

एक नज़र फिल्म का गाना भी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। जी हाँ, मजरू का शायराना अंदाज। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। चाइनाटाउन फिल्म से ये गाना हमने लिया है। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत मजरू का और संगीत रवि का।

श्रोताओ, आकाशवाणी सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी की कुछ गाने। 60 के दशक में धूम मचाने के बाद 80 के दशक में मजरू साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए एक अनोखा और मज़ेदार गाना भी लिखा। इस गाने में मजरू साहब ने भारत की अनेकता में एकता और प्यार की सार्वभौमिक भाषा को पुरो दिया। आइए इस गाने को अब आपको सुनवाते हैं अलग अलग भाषाओं में प्यार जताने के इस खूबसूरत अंदाज को। खुद्दार फिल्म का ये गाना है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं, मजरू के बोल और राजेश रोशन का संगीत।

यादों की बारात, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। संगीतकार आर डी बर्मन और गीत मशरूखा।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, 12:30 पर सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे चंद गज़लों के साथ। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। जानकारी का विषय होगा लवणीय व क्षारीय भूमि में हरी खाद का महत्व। जानकारी देंगे रमेश चावरिया। प्रादेशिक समाचार रिले होंगे जयपुर अजमेर केंद्र से दिन में 1 बजे। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुनीता शर्मा के साथ। आज चर्चा के विषय रहेंगे गर्मी की छुट्टियों में सैर मशहूरी। राजस्थान के प्रमुख बांध आंवला एक गुण अनेक, और साथ में ब्यूटी टिप्स। दिन में समाचार 2 बजे आप सुना करते हैं। 2:15 पर हिंदी में आप समाचार सुनेंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे केंद्र से रहेगा। 3 बजे उर्दू सर्विस, जो कि दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे युववाणी आप अक्षत चावला के साथ सुनेंगे। आज आपको जानकारी दी जाएगी हरियालो राजस्थान अभियान, वृक्ष लगाएं धरती बचाएं, जीवन में संगीत का महत्व, सद्भावना और आज का इतिहास। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण आप हमारे केंद्र से फिर से सुनेंगे। 6:05 पर सरायकी, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 6:40 पर जिले की चिट्ठी जयपुर अजमेर केंद्र से। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे जयपुर केंद्र से। शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे मुकेश चावरिया के साथ। आज चौपाल में चर्चा रहेगी देश हित में कुछ बातें। भेड़ व बकरी की देसी नस्लें, धान की उन्नत किस्में और सुविधा अनुसार मौसम बाजार भाव भी आपको बताया जाएगा। 7:45 पर फिल्म संगीत, 8 बजे एक ही फिल्म से जानकारी और गीतों के साथ स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। न्यूज़ 8:09 रात 9 बजे। सुगम संगीत 9:15 पर। 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोप, ये इंग्लिश कार्यक्रम होगा

जो दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। अखिल भारतीय रविवारी संगीत सभा, ये कार्यक्रम 10 बजे होगा दिल्ली केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात 11 बजे, न्यूज़ इन इंग्लिश 11:05 पर। 11:10 पर हमारे केंद्र से सभा समाप्ति उद्घोषणा। ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर पर। 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज आप सुन रहे हैं भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में कुछ ऐसे फनकार हुए जिन्होंने अपनी धुनों से इतिहास तो लिखा, लेकिन वक्त की परछाइयों में कहीं खो गई। आज के इस 25 मिनट के सफ़र में हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही महान संगीतकार को जिन्होंने मुकेश और तलत महमूद जैसे दिग्गजों को पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जादुई संगीत के उस्ताद बुलो सीरानी की। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं फिल्म जोगन के इस रूहानी गीत के साथ।

गीता दत्त की आवाज़ और बुलो सी रानी का संगीत रूह को छू जाता है। श्रोताओं, बुलो सी रानी का असली नाम था बुलो चंदी राम रामचंदानी। उनका जन्म 6 मई 1920 को हैदराबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। संगीत उनके खून में था। जब वे मुंबई आए तो उन्हें उस दौर के महान उस्तादों गुलाम हैदर और खेमचंद प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म तानसेन में उन्होंने खेमचंद जी के सहायक के रूप में बेमिसाल काम किया और फिर साल 1944 में फिल्म पगली दुनिया से एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की।

बुलुस दी रानी के संगीत निर्देशन में ये खूबसूरत कव्वाली आपने सुनी। श्रोताओं, बदरिया बरस गई उस पार, इस गाने ने मुकेश साहब के पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमा दिए थे। लेकिन श्रोताओं, बुलुस दी रानी के करियर का सबसे सुनहरा साल था 1950, जब फिल्म आई जोगन। दिलीप कुमार और नरगिस स्टार इस फिल्म के गाने के देश के कोने कोने में गूंज उठे। मीरा के भजनों को जिस तरह बुलो जी ने फिल्मी पर्दे पर संगीत से सजाया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और हमने कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जोगन फिल्म का गाना सुनवाया था। इसी फिल्म से उन्होंने गजल सम्राट तलत महबूब साहब को भी एक नई ऊंचाई दी। लीजिए, अब आपको इनका संगीतबद्ध किया हुआ गाना सुनवाते हैं, मूर्ति फिल्म का।

श्रोताओं, बुलोस ईरानी प्रतिभा से भरपूर होने के बावजूद 1960 के दशक के बाद फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड बदलने लगा। शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे नए संगीतकारों के आने से उन्हें काम मिलना कम हो गया। अंतिम दिनों में वे गुमनामी के अंधेरे में चले गए और 24 मई 1993 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिनेमा प्रेमी उन्हें हमेशा एक ऐसे सुरीले संगीतकार के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपनी धुनों में शुद्धता और भावनाओं को कभी कम नहीं होने दिया।

गीता रो के गाए इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज सुगम संगीत के फनकार हैं चंदन दास।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई चंद गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। आज की बातचीत का विषय है लवणीय व क्षारीय भूमि में हरी खाद का महत्व। जानकारी दे रहे हैं भाई रमेश चावरिया।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, काफ़ी समय से हूँ आपा खेती करण लाग रहा हाँ और दिन ब दिन आपा खेती में ज़्यादा उपज ज़्यादा मुनाफो कमाने की जुगत में रहे हाँ। और इन होड़ा होड़ में फसलों पर भांत भांत का कीटनाशक खाद उर्वरक जमीन में गेरण को काम आपा करण लाग रहा हाँ। ईशु एक बार तो अपनी फसल ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादा रासायनिक खाद उर्वरक दवाइयाँ स्प्रे अंग छिड़काव करण से अपनो अनाज और भूमि खराब जरूर होने लाग रही है। जको अनाज आपा आज के टाइम घर में भरता वो एकदम सफाई जहरीलो और दूषित अनाज है, जिसे भांत भांत की बीमारियां शरीर में लाग रही है। और तो और भूमि की भौतिक दशा भी खराब हो रही है। इशु धरती में या धरती पर रहने वाला जीव जंतु भी नष्ट होने लाग रहे हैं। बहुत सी नस्लां पशु पक्षियों की नष्ट होगी, बहुत सी नष्ट होने की कगार पर आ रही है। अपना पर्यावरण दूषित होना शुरू हो गया। ये जगह नुकसान आप देखने लाग रहे हैं और जगह परिणाम अपने सामने आ रहे है और आप भुगतन लाग रहे हैं। ये सब खेती में फसलों पर रासायनिक छिड़काव या बुरकाव की वजह से हुए। आज के टाइम में जितो ज़्यादा रसायन खेत में छिड़कांगा बिता ही इनका परिणाम आपने आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक देखने मिलेगा। इन वास्ते आप अब भी सुचेतना जरूरी है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य और जीवन आपा बचा सका। किसान भाइयों, आ बातों ने ध्यान में रखता थका आपा सगला ने अब धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ ध्यान देनो शुरू कर देना चाहिए। तो आज आपा बात कर सा हरी खाद के बारे में, क्योंकि जकी जमीन क्षारीय या लवणीय या उसर होगी बां जमीन ने हरी खाद को प्रयोग करके आपा सुधार सका। क्योंकि ज़्यादा उर्वरक छिड़काव छूँ और रासायनिक छिड़काव छूँ जमीन कठोर होगी, जिसू खेती भी नाम मात्र की होवे। भाई लोगों, हरी खाद अपनी माटी की रासायनिक और भौतिक दशा ने सुधार सके। भाई लोगों, सहसु पहली बात करा कि हरी खाद की जरूरत क्यों है जमीन ने। तो किसान भाइयों, ज्वार गेहूं की फसल को फसल चक्र अपनाने छूँ और भूमि में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में न डालने के कारण माटी में जीवाश्म पदार्थों की कमी ज़्यादा होने लगी। इनके अलावा माटी की जल धारण करने की कमी के सागे सागे माटी कटाव ज़्यादा होना भी इनको एक मुख्य कारण आप मान सका। माटी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में कमी और बांगे क्रियाशीलता में भी कमी देखने मिलन लग रही है। किसान भाइयों, माटी की लवणीयता क्षारीयता में भी बढ़ोतरी होने लग रही है। कई बार आपा देखा कि फसल में नया नया रोग लगना शुरू हो जाए। इनको मोटो सो कारण माटी जनित रोग और खरपतवार है। इन वास्ते किसान भाइयों, जे आ समस्याओं से छुटकारो लेनो है तो खेत की माटी और भौतिक दशा में सुधार खातर हरी खाद या कंपोस्ट खाद ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेवा। इंशु माटी में ताकत बनसी और फसल भी अच्छी हो सी। किसान भाइयों, इनके अलावा भी बहुत सा फायदा है हरी खाद का। जे हरी खाद को सही तरीका से प्रयोग करा तो हरी खाद माटी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ने बढ़ा के माटी संरचना में सुधार करे और माटी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जावे। माटी की अम्लीयता और क्षारीयता में भी सुधार लिया सका, क्योंकि हरी खाद भूमि में सड़ने से कई प्रकार का अम्ल पैदा हो गए माटी ने उदासी बनावे। किसान भाइयों, माटी में मौजूद कई प्रकार का सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए और जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी ज़्यादा हो जाए। इनके अलावा हरी खाद से माटी में पोषक तत्व जिया नत्रजन फास्फोरस कैल्शियम पोटेशियम आ तत्वों की मात्रा और पौधा जका पोषक तत्व ग्रहण करे बांगी क्षमता भी बढ़ जाए। ईशु माटी भुरभुरी होवे जके की वजह से माटी में वायु संचार भी सुचारू रूप से होनते रहे। भाई लोगों, ज़्यादातर खेतों में खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होवे। आपा सगड़ा जाना कि खरपतवार पूरी फसल खराब

0: कर दिए। जे आपा हरी खाद ज़्यादा उपयोग करांगा, यानी हर साल हरी खाद काम में ले सा, तो खरपतवार भी कम पैदा होसी और अपनी खेचल भी टलेगी। ढेंचो और सनई दो इसी फसलें हैं जो कि माटी में मौजूद क्षारियता और लवणीयता ने कम करने को काम करे। और अपना जानी जान किसान भाई बतावे है कि राइजोबियम बैक्टीरिया की मौजूदगी में दलहनी फसलों ने हरी खाद के रूप में बीजांत करने से 60 से 300 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक आपा स्थिर कर सका। अब बात करा हरी खाद की बीजांत करता टाइम के सावधानियां आपने रखनी है। तो किसान भाइयों, जद भी आपा हरी खाद की बिजाई करा तो बढ़िया उन्नत किस्म का बीज लेना जरूरी है और बेकिस्मा ही लेनी है जो कि बढ़िया शाखावां और ज़्यादा पत्तियां वाली होवे। पौधा का तना कोमल और रसदार होवे। पौधा की जड़ा जल्दी बढ़वार लेने वाली और गहरी जड़ा वाली होनी चाहिए। और हरी खाद के वास्ते जकी फसल आपा बिजाई करिए भी फसल में कम से कम पानी की जरूरत होवे, ज़्यादा पानी नहीं देना पड़े और फसल कीट और रोग अवरोधी भी होनी जरूरी है। इन बात को आपा खास ध्यान रखना है। भाई लोगों, अब आपा बात करा कि हरी खाद के लिए आपा किसी किसी फसलों की बिजाई कर सका। तो सहसे पहली फसल सनई की बात करा तो किसान भाइयों, सनई हरी खाद के वास्ते बहुत बढ़िया फसल मानी जाए और जठे बढ़िया बलुई और दोमट माटी है बी क्षेत्र में आपा सनई की बीजांत कर सका। लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी जरूरी है क्योंकि सनई एक दलहनी फसल है और इनमें पानी की जरूरत कम पड़े। इनकी बुवाई टाइम की बात करा तो मई से जुलाई तक या फिर बरसात के दिनों में भी आपा बीजांत कर सका। जे किसान भाइयों कने पानी सिंचाई की व्यवस्था कम है तो भी सनई की बीजांत बढ़िया तरीका से आपा कर सका। भाई लोगों, एक हेक्टेयर खेत वास्ते 80 से 90 किलो बीज आपा काम में ले सका। जे आपा मिश्रित फसल की बिजाई करने लग रहे हैं तो मिश्रित बीज में सनई को बीज 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखना है। भाई लोगों, सनई की एक खासियत आ भी है कि आ एक जल्दी बढ़वार लेने वाली और मूसला जड़ वाली फसल है जिससे खरपतवार भी जमीन में कम पैदा हो। बुवाई गए 40 से 50 दिन बाद सनई की फसल ने तोई सूँ या हल सूँ खेत में जुताई करके अच्छी तरह माटी में मिला देवा। इस 20 से 30 टन हरी खाद और 85 से 125 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर माटी में पैदा हो जाए। यहाँ ही डेंचो भी हरी खाद के लिए बहुत बढ़िया फसल है और आ भी एक दलहनी फसल में आवे। किसान भाइयों, डेंचो हर प्रकार की जलवायु और माटी में आपा इनकी बिजाई कर सका। किसान भाइयों, इनकी बिजाई आपा मई के पहली सप्ताह में कर देवा तो ज़्यादा ठीक रहे। हरी खाद वास्ते बीज की मात्रा आपा 40 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेना है। लेकिन बिजाई से पहली आपा बीज ने रात भर पानी में डुबो के रखा तो बीज उगाव बढ़िया और जल्दी होवे। किसान भाइयों, बीज जद आपा भिगोवा बिंगे बाद बीज ने पानी से बाहर निकाल के और बाद में बीज के ऊपर 4 किलोग्राम जिप्सम छिड़क के बिना हाथ से अच्छी तरह मिला लेवा ताकि जिप्सम बीज पर बढ़िया तरीके से चिपक जावे। जे बीज आपा उपचारित करके बीजांत करा तो उगान और फुटान भी बढ़िया होवे। इनके अलावा आपा ग्वार की फसल भी हरी खाद के तौर पर बिजाई कर सका। आ भी एक दलहनी और मूसला जड़ वाली फसल है। ग्वार की बिजाई वास्ते 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़े जिस 20 से 25 टन हरी खाद आपा ले सका। किसान भाइयों, हरी खाद सिंचित अवस्था में मानसून आने के 30 से 35 दिन पहली या असिंचित क्षेत्र में जठे बिरानी भूमि है बठे मानसून आने के तुरंत बाद आपा बीजांत कर सका। इन वास्ते आपा हरी खाद भूमि में जरूर देनी चाहिए। इशू एक तो आपा अनाप शनाप रासायनिक खाद उर्वरकों पर जको खर्चो लगावा वो कौन लगाना पड़े और दूसरी बात, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती से फायदों भी बहुत है। हरी खाद से कई साल तक माटी की उर्वरा शक्ति कायम रहे, कीड़ा कांटा भी कम लगे, खाद्यान्न भी जहर रहित पैदा होवे जको स्वास्थ्य के वास्ते ज़्यादा फायदेमंद है। भाई लोगों, हरी खाद के सागे सागे आपा कंपोस्ट खाद गोबर की खाद भी जमीन में दे सका और अपनी भूमि को सुधार करके अच्छी पैदावार ले सका। तो इन तरिया से आपा जकी भूमि बंजर होने लग रही है या लवणीय है या क्षारीय होने लग रही है बीच आपा खुद बच सका, भूमि बचा सका। पर अब हूँ खेत का निचालू सा, राम राम सा, राम राम।
1: लवणीय व क्षारीय भूमि में हरी खाद का महत्व, अभी किसान भाई सुन रहे थे ये जानकारी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे जो हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा। श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्केपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। IPL क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और ताप

0: मान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत। महिला जगत में आज सुनीता शर्मा कॉम्पियर रहेंगी।

हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर एक अकेली नारी ही काफी है पूरे समाज को संस्कारवान बनाने के लिए। कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को आपकी सखी सुनीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे गर्मी की छुट्टियों में सैर करें मसूरी की। राजस्थान के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, आंवला एक और उसके गुण अनेक, और ब्यूटी टिप्स पर। बहनों, गर्मी का मौसम है और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और छुट्टियां भी हो गई है, तो कहीं जाने का सोचे भी तो गर्मी के कारण भी जाने का मन ही नहीं होता। तो बहनों, तपती धूप और झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों की यात्रा से बेहतर तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। जब मैदानी इलाकों में तापमान आसमान छूने लगता है, तब पहाड़ों की ठंडी हवाएं और हरी भरी वादियाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत में वैसे तो कई खूबसूरत पर्वतीय स्थल हैं, लेकिन उत्तराखंड में स्थित मसूरी, जो कि जिसे कि हम पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में मसूरी की सैर करना एक जादुई अनुभव है जो जीवन भर के लिए खूबसूरत यादें बन जाता है। जहाँ आकर थम जाती है शहर की ये भाग दौड़, जहाँ आकर थम जाती है शहर की ये भाग दौड़, जहाँ की ठंडी हवाएं खींचती है अपनी ओर, पहाड़ों की रानी के आंचल में जो एक बार आ जाए, उसका दिल फिर खो जाता है मसूरी की ओर।

बहनों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे मसूरी की। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और सुहावना मौसम जो है वो मन को मोह लेता है। समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसी मसूरी अपनी प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। जहां एक ओर मैदानी इलाकों में लोग चिलचिलाती धूप से परेशान रहते हैं, वहीं मसूरी का मौसम बेहद खुशनुमा और ठंडा होता है। सुबह और शाम के समय चलने वाली ठंडी हवाएं तन और मन को तरोताजा कर देती है। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, ऊंचे नीचे देवदार के वृक्ष और दूर तक फैली बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ पर्यटकों का मन ही मोह लेती है। पता है बहनों, मसूरी और उसके आसपास घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। जैसे कि कैंपटी फॉल है, यह मसूरी का सबसे प्रसिद्ध झरना है। पहाड़ों से गिरते ठंडे पानी के नीचे नहाना और लहरों का आनंद लेना गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद वहाँ हम बात करें घूमने की जगह की, तो वॉल रोड है। यह मसूरी का मुख्य आकर्षण केंद्र है। शाम के समय माल रोड पर टहलना, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना और हस्तशिल्प की खरीदारी करना एक बेहतरीन अनुभव होता है। गन हिल, यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक जाने के लिए रोपवे यानी कि केबल कार का सफ़र बेहद रोमांचक होता है, जहाँ से दूरी मसूरी का विहंगम दृश्य देखने को भी मिलता है। उसके बाद कंपनी गार्डन आता है। यह भी एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है जो रंग बिरंगे फूलों, कृत्रिम झीलों और बच्चों के झूलों से सजा हुआ है। लाल टीबा भी, अगर आप पहाड़ों और बादलों को करीब से देखना चाहते हैं तो लाल टीबा सबसे सही जगह।

यहाँ से दूरबीन के जरिए बर्फबारी और हिमालय की चोटियों को भी देखा जा सकता है। फ्लाउंड्स एंड्स की सैर करना मसूरी की भौगोलिक अंत को दर्शाता है और देवदार के जंगल से घिरा हुआ क्लाइड एंड मसूरी के मुख्य शहर के लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहाड़ियों और आरामदेह वातावरण को खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। झट्टी पानी जलप्रपात भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। मसूरी के पास स्थित झट्टी पानी जलप्रपात एक कम प्रसिद्ध लेकिन खूबसूरत जगह है, जो गर्मियों में हरे भरे वातावरण के बीच सुकून भरी सैर का आनंद लेने के लिए बेहतरीन है। एक आसान और आरामदायक ट्रेक आपको एक खूबसूरत जलप्रपात तक ले जाता है, जहां पर्यटक ठंडी पहाड़ी हवा और वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं। बहनों, पता है गर्मी की छुट्टियों में मसूरी की यात्रा केवल घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों की जनजीवन और संस्कृति को समझने का भी अवसर देती है। घुमावदार रास्तों से होकर जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो खिड़की से दिखने वाले गहरे खंड और धुंध के बादल रोमांच भर देते हैं, जहाँ का शांत वातावरण और प्रदूषण मुक्त हवा शहरी जीवन के तनाव को पूरी तरह से मिटा देती है। रात के समय जब पहाड़ों पर जलने वाले दिए और लाइटें टिमटिमाती है तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। गर्मी की छुट्टियों में मसूरी की सैर जो है एक अत्यंत सुखद और ज्ञानवर्धक अनुभव है। यह यात्रा न केवल प्रकृति के करीब लाती है, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ यादगार समय बिताने का भी मौका देती है। अगर यदि आप भी गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर का विचार सबसे उत्तम है। बादलों के साए में जो मखमली शाम आती है, बादलों के साए में जो मखमली शाम लाती है, अपनी मखमली वादियों से वो सबको रिझाती हैं। यूं ही नहीं कहते इसे पहाड़ों की रानी, यूं ही नहीं कहते इसे पहाड़ों की रानी, मसूरी की हर एक फिजा दिल में उतर जाती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा।
2: जल ही जीवन है और राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से विविध और शुष्क राज्य के लिए यह पंक्ति 100% सटीक बैठती है। राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो मरुस्थलीय है, जहां वर्षा की अनिश्चितता और कमी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और इस चुनौती से निपटने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में यहाँ के नदी घाटी बांधों ने एक जीवनदायिनी भूमिका निभाई है। बहनों, ये बांध न केवल पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं बल्कि बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान के विकास के मंदिर भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े

रेगिस्तानों में से एक स्थित है। इस राजसी राज्य में भारत की प्रमुख नदियां प्रणालियां हैं, जैसे कि बनास है नदी और जवाई नदी और चंबल नदी। राजस्थान की ये नदियां राज्य में पेयजल की जीवन रेखा है और इन्हीं पर कई बांध भी बने हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बांधों की चर्चा आज हम करेंगे। जैसे कि बिसलपुर बांध है, बनास नदी पर बना बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं में से एक है। यह बांध मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, टोंक और दूदू जैसे प्रमुख जिलों की प्यास बुझाता है। पेयजल के साथ साथ यह टोंक जिले के एक बड़े हिस्से में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराता है। कंक्रीट से बना यह बांध राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। दूसरा है बहनों राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित यह बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भराव क्षमता के हिसाब से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसके साथ ही यहाँ पर बड़ा पन बिजली घर भी स्थापित है, जिससे राज्य को भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होती है और यह बांध परमाणु बिजली घर को भी पानी की आपूर्ति करवाता है। अब हम बात करते हैं जवाई बांध की। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध होने के कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। यह लूनी की सहायक जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के पास बना हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित जोधपुर और पाली जिलों के लिए यह पानी का मुख्य स्रोत है। अब इसमें पानी की कमी होती है तो उदयपुर की सेई सुरंग से पानी लाकर इसमें डाल दिया जाता है। लहरों को रोककर जिन्होंने बिजली और पानी का वरदान दिया मरुभूमि के सीने पर जिन्होंने हरियाली का पैगाम दिया है। नमन है उन इंसानी हाथों और शिल्प कला को जिसने राजस्थान के इन बांधों को एक नया मुकाम दिया।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों हम बात कर रहे थे राजस्थान के बांध की, अब हम बात करते हैं माही बजाज सागर बांध। यह बांध दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बना हुआ है। लंबाई के दृष्टिकोण से यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह परियोजना मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिलों के बड़े पैमाने पर सिंचाई और 100% बिजली की आपूर्ति होती है। अब बात करते हैं कोटा बैराज और जवाहर सागर। कोटा चंबल नदी पर बने ये दोनों बांध कोटा और आसपास के क्षेत्रों के लिए वरदान हैं। कोटा बैराज का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है, जहाँ से निकाली गई नहरें राजस्थान और मध्य प्रदेश के खेतों को सींचती है। और वहीं जवाहर सागर बांध, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन। तो बहनों पता है इन बांधों से निकली नहरों जैसे कि चंबल और माही की नहरें राजस्थान के शुष्क खेतों को हरा भरा कर दिया है, जिससे किसान साल में कई फसलें ले पा रहे हैं। बिसलपुर और ज्वाई जैसे बांधों के बिना राजस्थान के बड़े शहरों में गर्मियों के दिनों में पानी की कल्पना करना भी मुश्किल है। और कोटा और रावतभाटा के उद्योगों तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से इन बांधों से निरंतर पानी मिलता है। अधिकांश

स्थल आज खूबसूरत पर्यटन और पक्षी विहार केंद्र के रूप में विकसित हो चुके हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो राजस्थान की बांध केवल कंक्रीट और मिट्टी के ढांचे नहीं है, बल्कि ये राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की धड़कन है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन जलाशयों के जल का विवेकपूर्ण उपयोग और इनका संरक्षण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। यदि हम जल संचयन के महत्व को समझेंगे, तभी ये बांध आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। रेतीले धोरों के बीच ये पानी का समंदर सजाते हैं। सूखी नदियों को बांधकर ये खुशहाली लाते हैं। जवाई हो या मेजा या हो माही बजाज सागर, संकट के दिनों में यही बांध राजस्थान का भाग्य चमकाते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: आंवला एक गुण अनेक, यह कहावत एक छोटे से हरे फल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल या धात्री या माँ के समान रक्षा करने वाला कहा गया है। आधुनिक विज्ञान भी इसके चमत्कारी फायदों को स्वीकार करती है। बिल्कुल बहनों, आंवले में बहुत से औषधीय गुण होते हैं और यह फल भारतीय उपमहाद्वीप के गीले जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में शरद ऋतु में फलीभूत होता है और भारत में इसे एक पवित्र वृक्ष के रूप में भी माना जाता है। इसके फल खट्टे व स्वाद के साथ बहुत ही पौष्टिक होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आंवले के फल का लगातार 45 दिनों तक सेवन करते रहने वाले व्यक्ति में नई शारीरिक स्फूर्ति आती है तथा कायाकल्प हो जाता है। आंवला जो है एक मूत्रवर्धक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जिसे भोजन अवशोषण को बढ़ाने, पेट में एसिड संतुलन और मस्तिष्क और मानसिक कामकाज पौष्टिक बनाया जाता है और यह फेफड़ों को मजबूत कर प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, मूत्र प्रणाली में मदद करता है, त्वचा की गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ बालों को बढ़ावा देता है। बहनों, ये विटामिन सी का पावर हाउस होता है। आंवला प्रकृति में विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। एक छोटे से आंवले में संतरे की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक विटामिन सी होता है और खास बात तो यह है कि इसे सुखाने या पकाने के बाद भी इसका विटामिन सी है वो नष्ट नहीं होता। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। और बहनों, पता है कि यह आंवला पाचन तंत्र के लिए भी वरदान है। अगर आपको एसिडिटी या कब्ज है तो सुबह खाली पेट आंवले का जूस या चूर्ण लेने से पेट साफ रहता है और गैस, एपच या एसिडिटी है उससे भी राहत मिलती है। यह पाचन क्रिया

को दुरुस्त कर शरीर को वजन को संतुलित रखने में भी मदद करता है। इसके जो एंटीऑक्सीड रहते हैं वह खून को साफ करते हैं, जिससे चेहरे पर निखार आता है और कील मुहासे से दूर होते हैं, त्वचा में चमक आती है और यह आंवला बालों की जड़ों को भी पोषण देता है। इसका अगर हम नियमित सेवन करते हैं या तेल के रूप में बालों में हम लगाते हैं तो यह बालों को झड़ने से रोकता है, इसे ऐसे में सफ़ेद होने से भी बचाता है और डैंड्रफ को भी दूर करता है। आंवले में मौजूद विटामिन ए और कैरोटीन

बहनों, ये आंवला क्रॉनिक बीमारियों से भी बचाव करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण रखता है। आंवले में क्रोमियम पाया जाता है जो कि इंसुलिन को सक्रिय करता है और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, और यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और धमनियों को स्वस्थ रखकर दिल की बीमारियों से भी बचाता है। हम दैनिक जीवन में आंवले का उपयोग कर सकते हैं। आंवले का स्वाद कसेला और खट्टा होता है, लेकिन इसके फायदों का लाभ उठाने के लिए इसे कई तरीकों से हम आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं। सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ 10 से 15 मिलीमीटर जूस पीना चाहिए और रात को सोने से पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हैं। मुरब्बा या कैंडी भी बना सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों के लिए मीठा और स्वादिष्ट विकल्प है। अचार या चटनी भी इसकी बहुत स्वादिष्ट होती है। भोजन का स्वाद बढ़ाने और पाचन को बेहतर करने के लिए यह सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और बहनों, आंवला जो है वो तासीर में ठंडा होता है। यदि आपको सर्दी खांसी की प्रवृत्ति है तो इसका सेवन त्रिफला के रूप में या शहद या गुनगुने के पानी के साथ करना अधिक उपयुक्त रहेगा, और नियमित रूप से एक आंवले का सेवन और डॉक्टर और दवाइयों को दूर रख सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है अगर महान इम्यूनिटी बढ़ाता है अगर महान तो आंवले को बनाओ अपनी शान। विटामिन सी का राजा है, आंवला सेहत के लिए ताजा है।

सुंदरता कोई रूप नहीं, यह तो मन का दर्पण है। सुंदरता कोई रूप नहीं, यह तो है मन का दर्पण। जो छल कपट से दूर, वही है सच्चा सौंदर्य आकर्षण। बिल्कुल बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो ग्लो करे, और सच मानिए यह कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब कुछ बातों का ध्यान रखें। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बातों को अपनाना है। यूँ तो हमें पता ही है कि बाज़ार में कई तरह के ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन वे सबकी स्किन पर सूट नहीं करते। इसीलिए चमकदार त्वचा पाने के लिए हम घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। चेहरा चमके और खूबसूरती निखरी, यह ख्वाहिश आज हर लड़की की है, फिर चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। घर के किचन में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी मदद से हर चेहरे को चमका सकते हैं। कुछ अच्छी आदतें भी हैं जिनसे भी हम ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम फेस के लिए क्या करें ताकि हमारी स्किन देखकर सब कह उठे, वाह चेहरे तो चमक रहा है, देखो इसका। इसके लिए अच्छी नींद लें। दिन भर काम करना, रात को देर तक जागना और 8 घंटे की नींद पूरी ना लेना, यह स्किन के लिए अच्छा नहीं है। यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है। शरीर के बहनों, भरपूर पानी भी हमारी जो स्किन है उसको ग्लो करने में मदद करता है। इससे हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है वो बाहर निकलती है और नई बॉडी सेल्स बनते हैं। तो अब आप चाहे तो पानी में हेल्दी चीज़ें भी मिलाकर पी सकते हैं।

सुबह सुबह उबलते पानी में एक चुटकी दालचीनी मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे वजन भी कम होता है और साथ में स्किन भी ग्लोइंग होती है। इसके अलावा बेसन, हल्दी और कच्चा दूध, 2 चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर सादे पानी से इसे धो लें। यह त्वचा की रंगत साफ करता है और टैनिंग को भी हटाता है। इसके अलावा 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदे नींबू की रस की मिलाएं और इसे चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं, फिर धो लें। यह त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइजर करता है और चेहरे पे चमक लाता है और जो चेहरे पे दाग और धब्बे होते हैं उनको भी हटा देता है। अगर आपकी डार्क सर्कल है तो आप खीरे या आलू के पतले स्लाइस काट कर आँखों पर 10-15 मिनट के लिए रखें। इसका जो रस है वो आंवले जो आँखों के आसपास की त्वचा है उसको ठंडक देता है और कालापन को दूर करता है। मुल्तानी मिट्टी और शहद का पैक चेहरे पर लाता है अनोखा ब्रेक। गुलाब जल का जब हो स्पर्श खिल उठती है त्वचा की हर पर्स। चावल का आटा और बेसन साथ हटाए टैनिंग और दे निखार की सौगात। हल्दी, एलोवेरा और थोड़ा सा दूध दमकती त्वचा से मिटा दे हरसूत। आंवला और नारियल का तेल लगाना घने काले बालों का राज है पुराना। पियो खूब पानी और लो भरपूर नींद, यही असली सौंदर्य का सीक्रेट राज।

बहनों, आज आपसे जो मैंने जानकारी साझा की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब फिर मिलने की उम्मीद के साथ अब अपनी सखी सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, DRM 909 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India and United States reaffirms strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners.

0: भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में

0: भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर

0: कहा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं कूली नंबर 1 फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है पूर्णिमा और कुमार सानू ने। गीत समीर का।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों को आपने सुना, फिल्म थी चमत्कार।

डेली सिक्स, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना। गीत प्रसून जोशी का था, संगीत था यार रहमान और रजत ढोलकिया का। इस गाने में आवाज़ थी रेखा भारद्वाज की।

ओमकारा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं। सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में, गीत गुलजार का है और संगीत विशाल भारद्वाज का।

कार्यक्रम में अब आप सुनिए फन्ना फिल्म का गीत शान की आवाज़ में, प्रसून जोशी का गीत संगीत, जतिन ललित का।

इन दिनों तापमान 42-43 के आसपास पहुंच रहा है। हीटवेव जैसी स्थिति बनी हुई है। श्रोताओं, इसमें तेज गर्मी और लू को देखते हुए अपना खास ख्याल रखें। दोपहर 12 से 4 बजे तक बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। खूब पानी पिएं, छाछ, नींबू पानी, लस्सी और ORS का सेवन करते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। धूप से निकलते समय सिर पर कपड़ा या टोपी जरूर रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। खाली पेट बाहर न जाएं और ज़्यादा देर धूप में काम करने से बचें। अगर चक्कर आना, तेज सर दर्द, उल्टी या घबराहट महसूस हो तो तुरंत छांव में जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। पशु पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखें, क्योंकि इस गर्मी में इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। सुरक्षित रहिए, ठंडा रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। अब से थोड़ी देर बाद कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत और अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान किलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम किलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हुए हैं। और टेनिस

फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादला ख्याल किया और भारत अमरीका क्लीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तिजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए डॉ जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते की मौजूदा सूरतहाल व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काली खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने तवानाई की तिजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी अहमियत हासिल है। डॉ जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राब्तों को खास मकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौकिफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तिजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम क्लीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के किलीदी एतबार से यकसा मौकिफ हैं, जिससे आने वाली सदी की सम तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका किलीदी एतबार से यकसा मौकिफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। ये मीटिंग इस माह की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चैन जोंगा के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खान चैन जोंगा को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के महाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खान चैन जोंगा की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीत साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असल नीयत रही है। सारफीन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकज के रोल को वसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सार्फिन के उमूर की वजारत ने बताया कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकिस को वजन और पैमाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाजत होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीम शुदा जांच मराकज कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस इकदाम से तस्दीक की खिदमात के अमल में बेहतरी आएगी, सलाहियत में इजाफा होगा और पूरे मुल्क में माहौलियात के लिए ज्यादा साजगार ईंधन के इस्तेमाल को तकवियत मिलेगी। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निपटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीजें पेश की हैं।

0: गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इतला नहीं मिली है। 6 रोजा 79वीं आलमी सेहत असम्बली का इजलास जेनेवा में खत्म हो गया है, जिसमें मिंबर मुल्कों ने इंसानी सेहत के तहफ्फुज में कसी रुखी इश्तराक को आगे बढ़ाने की खातिर कई करारदादें मंजूर की हैं। आलमी सेहत असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर 20 से ज्यादा फैसले और 13 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें तपेदिक, एमरजेंसी इफ्जान सेहत, एंटी माइक्रोबायल मुदाफियत, हेमोफीलिया और दीगर उमूर शामिल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अपराध की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। ये धमाका राजधानी कोयटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाकये के बाद पूरे कोयटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शिमाली चीन में कोयला कान में हुए धमाके से कम 82 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांजी सूबे में लियू शेनू कोयला कान में हुआ यह गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। जुमे के रोज जब यह धमाका हुआ तो कान में मुबैना तौर पर 247 कानकुन काम कर रहे थे। भारत में चीन के सफीर यू फीहोंग ने कान के हादसे के बाद ताजियती पैगाम भेजने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तशक्कुर का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चीन के सफीर ने भारत की हिमायत और हमदर्दी के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि जाए हादसा पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल जुमरे में यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल वीनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे, जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान किलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खाजा डॉ एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खाजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम किलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को यह सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1971 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हमने नगमे लिए हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए, क्योंकि आज उनका यौम वफात है। मजरू सुल्तानपुरी 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तालीम उनकी मजहबी रही, इब्तदा घर में ही हुई लेकिन फिर बाद में दर्स निज़ामी से फरागत के बाद उन्होंने हिकमत शुरू कर दी और लखनऊ में तकमीलुल तिब के कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल की। इत्तफाक से सुल्तानपुर में एक मुशायरा हुआ और वहाँ आपने एक गज़ल पढ़ी जिसकी बड़ी शोहरत हुई। लोगों ने कहा कि आप शायरी भी साथ साथ करें तो बेहतर है, हिकमत भी चलती रहे और शायरी भी चलती रहे। उस दौर में

जिगर मुरादाबादी साहब का सिक्का चलता था, लोग जिगर मुरादाबादी को पसंद करते थे, और उसी की तर्ज पे मजरू ने अपनी शायरी का आगाज किया। मजरू सुल्तानपुरी के बारे में एक बात यह भी कही जाती कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की मेंबर थे और बहुत सरगर्मी के साथ उसकी कारकर्दगी में हिस्सा लेते थे। मजरू सुल्तानपुरी 1946 में मुंबई गए और वहाँ साबु सदीक में एक मुशायरे में जब गज़ल पढ़ रहे थे, मारूफ प्रोड्यूसर यार कारदार की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने उनसे कहा कि आप फिल्मों के लिए लिखिए। उस मुशायरे की सदारत जिगर मुरादाबादी साहब फरमा रहे थे। मजरू साहब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन जब जिगर साहब ने समझाया कि नहीं, आपको लिखना चाहिए, इससे आपकी न सिर्फ शायरी मजबूत होगी बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके ख़ानदान की किफालत का ज़रिया भी बनेगी, तो मजरू ने फिर इब्तदा की और सबसे पहले नौशाद के लिए एक उन्होंने नगमा लिखा। उस नगमे के बाद धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ और उसके बाद आखिरी वक्त तक तकरीबन सन 2000 तक उन्होंने नगमे लिखे और खूबसूरत नगमे जिनमें गज़ल भी है और गनाइत भी है, शायरी भी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वैसे ही कुछ नगमे सुनवा रहे हैं।

और सामिन, एक नगमा और था फिल्म आर पार का, जिसे गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी और ओपी नैयर ने मौसीकी सजाया था। उस नगमे ने भी मजरू सुल्तानपुरी को शोहरत बख्शी।

0: नीलिमा, चप्पू को रख दो और मेरे करीब आ बैठो। बजरे को इन लहरों पर आप ही आप बहने दो और मुझसे बातें करो, आर्यवीर की, उनके नाटकों की।
1: राजकुमारी, अगर आर्यवीर को ना देखें तो अच्छा है।
0: क्यों, क्या वो देखने में ऐसे बुरे लगते हैं?
1: वो इतने खूबसूरत है राजकुमारी कि आप उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे।
0: क्या सच कहती हो नीलिमा?
1: सच झूठ का फैसला तो आज हो ही जाएगा।
0: वो कैसे?
1: आज स्टेज पर उनका नया नाटक खेला जा रहा है।
0: मैं जरूर चलूंगी नीलिमा। क्या वहां हम उन्हें देख भी सकेंगे?
1: क्यों नहीं।
0: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ख्याल रहे, मेरे कुछ चुने हुए गीत उन्हें लिखकर जरूर दे देना और उनकी राय भी मालूम करना।
1: आपके प्रेम गीत पढ़कर तो दीवाने हो जाएंगे आपके आर्यवीर।
0: हमारे आर्यवीर?
1: आपके नहीं तो और किसके? आज तो महाराज और महारानी भी जाएंगे वहां। आर्यवीर के नाटकों की शोहरत दूर दूर तक फैल रही है।
0: नीलिमा, सुना है लड़कियां उनकी दीवानी हैं, कहीं किसी को दिल तो नहीं दे बैठे?
1: किसी को दे भी दिया हो तो वापस मांग लेंगे राजकुमारी अमरावती के लिए। वो हसीन है तो हमारी राजकुमारी भी किसी से कम नहीं। देखिए बदलियों में छुपा छुपा चंद्रमा कैसी हसरत से देख रहा है आपके चेहरे को।
0: हटो, बनाओ नहीं।
1: गुलाबी पेश करूं?
0: संदल का अर्क मिला देना।
1: लीजिए।
0: तुम भी लो।
1: आज नहीं, वरना आर्यवीर के नाटक का लुत्फ नहीं आएगा।
0: तब तो मैं अभी नहीं लूंगी। नीलिमा, बजरे को राजभवन वापस ले चलो।
1: जो हुक्म राजकुमारी।

0: नाटक का समय भी हो गया है। देखिए ना, दूर रंगशाला चिरागों से कैसी जगमगा रही है। सुना है आर्यवीर ने ये नाटक पूरे 2 बरस में लिखा है।
1: अच्छा,
0: और ये उनका बेहतरीन नाटक है। लीजिए राजकुमारी, अब नाटक शुरू हुआ ही चाहता है। महाराज और महारानी तशरीफ ले आए। वो देखिए, सामने मंच के दाएं तरफ झरोखे में, देख लिया, उनके साथ प्रेमवर्धन भी तो है। कितने अच्छे लग रहे हैं प्रेमवर्धन, यहाँ भी फौजी लिबास में आए हैं। मेरा ख्याल है ये सोता भी फौजी लिबास में ही होगा। इनके दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है।
1: फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना नीलिमा, मुझे नफरत है इससे, इसके नाम से भी और इसके काम से भी। भगवान जाने महाराज इसके इशारों पर क्यों चलते हैं।
0: प्रेमवर्धन बहादुर है राजकुमारी, पिछली लड़ाई में दुश्मनों को जो शिकस्त मिली उसका सेहरा इन्हीं के सर है। सारा देश इन पर फख्र करता है, महाराज तो इन्हें अपना बेटा कहते हैं।
1: बस बस नीलिमा, बहुत गुणगान हो चुका इस फौजी अफसर का। सोचता होगा महाराज के बाद राज सिंहासन का वारिस यही होगा, मगर ये भूल है इसकी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: अरे लो, पर्दा उठने ही वाला है।
1: अरे स्टेज पर ये अंधेरा क्यों हो गया।
0: ये आर्यवीर का पुराना अंदाज है राजकुमारी, वो अब स्टेज पर दाएं तरफ से दाखिल होंगे। वो देखिए, वो आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ।
0: धीरे धीरे, वो जरा सी रोशनी हुई, रोशनी के दायरे में ये चेहरा देखिए।
1: हाँ, देखा, पहचान गई मैं, ये आर्यवीर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। क्यों नीलिमा, मैंने पहचानने में गलती तो नहीं की।
0: नहीं राजकुमारी, आपने ठीक पहचाना। देखिए ना, कितने शांत लग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, देख भी रहे सबको। महाराज और महारानी के सामने किस अदा से झुक रहे हैं। अब उनकी नजर आपकी तरफ है।
1: क्या उन्होंने हमें देख लिया।
0: इजाजत हो तो इस निगोड़ी चलमन को हटा दूं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख लें।
1: नहीं नहीं पगली, ऐसा गजब ना करना, महाराज ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। और हाँ, तुमने उनसे मुलाकात के लिए कोई तरकीब निकाली।
0: तरकीब निकाल ली है, नाटक शुरू होते ही आर्यवीर स्टेज के पीछे चले जाते हैं, हम भी चुपके से वहीं चलेंगे।
1: तुमने मेरे गीत लिख लिए ना।
0: हाँ, बहुत खुशखत लिखे हैं, गीतों का चुनाव ही मैंने किया है।

0: तुम मेरे साथ ही रहना। हाँ लो आर्यवीर को देखो, हमें देख लिया उन्होंने,
1: मुस्कुराई भी है।
2: आ जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ, कोई काम हो तो दासी को आवाज दे दीजिएगा।
0: नहीं नहीं, अकेले में मैं घबरा जाऊंगी नीलिमा।
2: आप अकेले नहीं होंगी, आर्यवीर भी तो होंगे।
0: तभी तो आज दूसरी बार डर लग रहा है, आर्यवीर से नहीं, खुद अपने से।
2: वो आपका सारा डर दूर कर देंगे।
3: आज मौसम कितना अच्छा है, आपके बाग की हर चीज पर निखार है।
0: नीली मैं बहुत शैतान है, कह रही थी।
3: हाँ हाँ, आप रुक क्यों नहीं, कहिए ना।
0: मैंने उससे कहा तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मुझे डर लगता है। बोली आर्यवीर आपका डर दूर कर देंगे।
3: तो क्या मैं इतना डराना लगता हूँ आपको?
0: नहीं नहीं, डर आपसे नहीं, अमरावती को अपने आप से डर लग रहा है।
3: वो किस लिए?
0: न जाने क्यों बार बार यही लगता है, जैसे जैसे हमें कोई देख रहा है छुप छुप कर।
3: आपको नाटक कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा, लेकिन नाटक में कीर्ति को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा।
3: मौत के अलावा उसका कोई और अंजाम हो ही नहीं सकता था।
0: इतना जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरत का ऐसा अंजाम?
3: ये मौत नहीं राजकुमारी, बल्कि उसका खामोश एहतजाज है, पूरे समाज के खिलाफ, पूरी तहजीब।

0: एक निकम्मे शासन के खिलाफ।
1: न जाने क्यों मुझे उसकी मौत नागवार लगी।
0: यही मेरा मकसद था। कीर्ति की मौत पर आदमी अंदर से टूटने लगे और देर तक अपने रूह के अंदर एक जलन सी महसूस करता रहे। मैंने आपके गीत पढ़े।
1: कैसे लगे आपको?
0: अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी से दूर।
1: वो कैसे?
0: आपके गीतों में सुंदरता तो है, लेकिन जिंदगी का रस नहीं।
1: सुंदरता में रस ना हो तो उसे सुंदरता कैसे कहेंगे?
0: ख्वाब कितने सुंदर होते हैं, कितने हसीन, लेकिन हकीकत से कितनी दूर होते हैं। राजभवन में रहकर आप ख्वाब देख सकती हैं, इस राजभवन से भी आलीशान और बुलंद राजभवन के, लेकिन हकीकत राजकुमारी जी राजभवन के अंदर नहीं, राजभवन के बाहर बिखरी हुई है।
1: क्या ये जिंदगी मैं नहीं देख सकती?
0: क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए आपको राजभवन के कैद से बाहर निकलना होगा, वरना आपके अंदर की शायरा इन ख्वाबों में दफन हो जाएगी। अगर आपको राजकुमारी अमरावती के बजाय सिर्फ अमरावती बनना है और युग युग तक अपने गीतों से सोई हुई आत्माओं को जगाना है, तो राजभवन के बाहर जो दुनिया बस रही है उसे जीना होगा।
1: हम ये दुनिया जरूर जिएंगे।

0: ये हम क्या सुन रहे हैं प्रेमवर्धन? क्या ये सच है कि वो भिकमंगा नाटककार राजकुमारी के महलों में आने जाने लगा है?
1: सिर्फ यही नहीं महाराज, बल्कि राजकुमारी मामूली औरतों के भेष में उसके साथ शहर के गंदे इलाकों में घूमने जाती।
2: मुझे यकीन नहीं आता प्रेमवर्धन, लगता है तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है।
0: नहीं महारानी, ये सच है।
1: और ये भी सच है कि अगर अभी से कोई तरकीब ना सोची गई तो पूरे देश में राजकुमारी बदनाम हो जाएंगी।
0: कोई राज घराने पर उंगली उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: इस सांप को काटने से पहले ही अपने पैरों तले कुचल डालो प्रेमवर्धन।
1: चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इससे पूरे देश में कोहराम मच सकता है। लोग आर्यवीर को बहुत चाहते हैं।
0: एक तरकीब है,
2: और वो ये कि इस सांप को दूध पिलाना शुरू कर दो।
0: महारानी ने हमारे मुंह की बात छीन ली। ऐसा ही करो प्रेमवर्धन, आर्यवीर शायद राज सिंहासन के ख्वाब देखने लगा है। उसे दरबारी नाटककार बना दो और हमेशा हमेशा के लिए निकम्मा कर दो। आर्यवीर, हमें तुम जैसे कलाकार पर नाज है। तुम वाकई अपने जमाने के एक बड़े नाटककार हो। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारा फन इससे ज्यादा तरक्की करे और तुम्हारी शोहरत दूसरे देशों में भी फैले।
3: मैं आपका शुक्रगुजार हूं महाराज, मेरे फन को आप कदर की निगाह से देखते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है।
0: आज से तुम राज कलाकार हो, दरबार में तुम्हारे लिए एक मुनासिब जगह मुकर्रर कर दी गई है।
3: इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन आर्यवीर एक आम आदमी है और एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है। इसकी जगह राज दरबार में नहीं महाराज, बल्कि इसे आपके ही इस शहर में वो छोटा सा मकान ज्यादा अजीज है, जहां इसके नाटकों के किरदार जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं और इसके साथ जीते हैं। आपके इस अजीमुल शान दरबार के आदाब से न वो वाकिफ हैं और न मैं।
0: तो हम समझ ले कि हमारे बख्शे हुए इस एजाज को ठुका रहे हो।
3: आपका ये एजाज मेरे लिए बहुत है कि आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। और
0: हम चाहते हैं कि आर्यवीर जैसा कलाकार सुख और आराम से जिंदगी गुजारे, अपने फन को हमारी दौलत से और निखारे।
3: फन को दौलत से नहीं, खून से सींचा जाता है महाराज, और आर्यवीर के रगों में अभी बहुत सा खून बाकी है जिसे वो फन की देवी की नजर कर सकता है।
4: आर्यवीर ने महाराज की बात न मानकर अच्छा नहीं किया राजकुमारी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो दरबार की रंगरलियों में अपने अंदर के कलाकार को खो दे?
5: महाराज बहुत नाराज है।
4: आर्यवीर अपनी तरह से जीना चाहते हैं और यह हक उनसे कोई नहीं।

0: क्या महाराज भी नहीं?
1: हाँ, वो भी नहीं।
0: महाराज बहुत जिद्दी हैं।
1: और आर्यवीर उनसे भी बड़े जिद्दी हैं। न वो अपने फन को त्याग सकते हैं, न गरीबी को।
0: और अमरावती को?
1: अमरावती क्या होती है नीलिमा, उनके फन पर कितनी ही राजकुमारियों को कुर्बान किया जा सकता है।
0: मैं महाराज के गुस्से से डरती हूँ, और प्रेम वर्धन इस आग को जरूर हवा देगा।
1: नीलिमा, कितनी गहरी है ये नदी। जी चाहता है आर्यवीर के साथ इस नदी की गहराइयों में उतर जाऊं और फिर कभी बाहर न निकलूं। हमेशा हमेशा के लिए नामालूम गहराइयों में डूबूं।

0: आओ सुभाषिनी, बैठो। सुभाषिनी के आते ही कमरे में रोशनी हो गई। तुम ही बैठ जाओ कुमार, इधर मेरे करीब
1: जी।
0: सुभाषिनी ये चिराग वहां रख दो।

0: आओ सुभाषिनी, बैठो। सुभाषिनी के आते ही कमरे में रोशनी हो गई। तुम भी बैठ जाओ कुमार, इधर मेरे करीब
1: जी।
0: सुभाषिनी ये चिराग वहां रख दो ऊपर, बस बस वहीं ठीक है।
2: आज नीलिमा आई थी।
0: नीलिमा यहां आई थी?
1: हाँ।
0: कुछ कहा? अमरावती कैसी है?
2: आप ही की तरह दुखी है, उसके महल के चारों तरफ पहरा है, नीलिमा को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। प्रेमवर्धन ने अपनी खास दासी को अमरावती की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया है। सुना है इस पूर्णिमा को दोनों की शादी है।
0: ये तो जुल्म होगा, मुझ पर नहीं राजकुमारी पर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। महल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगी। दरअसल वो राजभवन में रहने के लिए पैदा ही नहीं हुई।
1: अब क्या होगा रे वीर?
0: मालूम नहीं कुमुद, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द कोई अनर्थ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ। मैं एक बड़ा नाटककार सही, लेकिन प्रेमवर्धन मुझसे भी बड़ा नाटककार है, जालिम और संग दिल।
2: आदिवीर, ये खबर लाई हूँ।
0: क्या शादी हो गई?
2: नहीं।
0: तो क्या अमरावती?
2: राजकुमारी राजभवन से गायब हो गई, सिपाही उसकी तलाश में इधर आ रहे हैं।
1: आदिवीर आप यहाँ से निकल जाएं, वो जरूर आपको पकड़ लेंगे। आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। सुभाषनी तुम नीम के साथ जाओगी।
3: और तुम?
1: आप मेरी फिक्र न करें,
0: मुझे न पाकर वो जरूर समझ लेंगे कि अमरावती मेरे साथ है। वो तुम्हें बड़ी अजियतें देंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कुमुद, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं जेल की दीवारों के साए में एक नया नाटक लिखूंगा जिसमें कीर्ति जिंदा रहेगी।
4: आर्यवीर ये तुम्हारा स्टेज नहीं, जेल की सिया कोठड़ी है। जहां तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे, वही बोलना होगा जो प्रेमवर्धन चाहेगा। अब भी मौका है, सच सच बता दो कि अमरावती को तुमने कहां छुपा रखा है, वरना तुम्हारी हड्डियों से लिपटी हुई इस खुशनुमा खाल को खींचकर शिकारी कुत्तों को खिला दिया जाएगा, और तुम्हारी हड्डियों को इस जमीन के नीचे हमेशा हमेशा के लिए गाड़ दिया जाएगा।
0: अगर मुझे मालूम होता कि राजकुमारी कहां है, तब भी मैं उसका पता हरगिज न बताता।
4: लगता है तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं।
0: राजकुमारी की जिंदगी मुझे उससे ज्यादा अजीज है।
4: अमरावती हमारे सिपाहियों की निगाह से कब तक छुपी रहेगी? आज नहीं तो कल उसे राजभवन में आना ही होगा। मगर तुम मारे वीर मौत के मुंह में जाने से नहीं बच सकते। हम तुमसे बड़े नाटककार हैं, और ये वीर तुम्हें इतनी जल्दी मौत के घाट नहीं उतारेंगे। ये तमाशा अमरावती को भी देखना होगा, अपने अजीम नाटककार का अंजाम वो अपनी आंखों से देखेगी। सिपाहियों इस कैदी के तलवे छील दिए जाए और फिर इसके नीचे जलती हुई रेत बिछा दी जाए। हम इस नाटककार के सब्र की दाद देना चाहते हैं।

0: अरे वीर, हम तुम्हारे लिए आज एक खुशखबरी लाए।
1: क्या कोई अजियत बाकी रह गई?
0: राजकुमारी को तलाश कर लिया गया है।
1: क्या अमरावती मिल गई?
0: हाँ, तुम्हारी मुराद बर आई। अब तुम जल्द मर सकोगे।
1: क्या आज नहीं?
0: बस 2 दिन और, तब तक तुम्हें अपनी आंखें हमें देनी होंगी, ताकि तुम्हारी ये गुस्ताख आंखें अमरावती को देख ना सके। जब तुम्हारी खाल खींची जाएगी तो तुम्हें यह जरूर बता दिया जाएगा कि अमरावती हमारे किस पहलू में बैठी है। सिपाहियों, इस अजीम नाटककार की आंखों की रोशनी से गरम गरम सलाखों की भूख मिटाना और इस कोठरी में चारों तरफ मौत का अंधेरा बिछा दो।
1: हाँ, दाग दो मेरी आंखें, मेरी चीख तक न निकलेगी।

0: नीलिमा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? बताओ नीलिमा, आर्यवीर कितनी तकलीफ में होगी, कितने गहरे अजाब में।
1: राजकुमारी, सुना है आज उनकी आंख की रोशनी भी छीन ली गई। उनका दुख अब न देखा जाता है न सुना जाता है। आप महाराज और महारानी से क्यों नहीं कहती कि वो आर्यवीर को जल्द से जल्द मार डाले? राजकुमारी, ये पल पल का दुख मरने से बदतर है। एक एक पल जैसे हजारों मौतों के बराबर है, बल्कि हजारों मौतों से भी बढ़कर है। इतने दुख तो कीर्ति ने भी नहीं सहे थे, बस चुपचाप मर गई थी। अब तो भगवान से मेरी यही दुआ है, पिछली किरे समय फट जाए और मेरा आर्यवीर जल्द से जल्द लंबी नींद सो जाए।
2: जुल्म जब हद से गुजरता है तो कयामत आती है। आज वो दिन आ गया है जो हम सबसे कुर्बानी मांग रहा है। इस देश के अजीम नाटककार की जिंदगी को जिस तरह पल पल नोचा गया है, उसकी दर्दनाक कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। प्रेमवर्धन ने जहां महाराज और महारानी को धोखे से कैद कर लिया है और आर्यवीर को जीते जी मार डाला है, वहां उसने आज राजकुमारी को भी अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। हम कितने कमजोर और बदनसीब हैं कि खामोशी से जुल्म को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अगर हम अब भी खामोश रहे तो इसका मतलब यह होगा कि यह देश एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें हम सब दफन हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी हमारी रगों में खून बह रहा है और इसका सबूत ये इंसानी सरों का सैलाब है जो राजभवन को एक सूखे तिनके की तरह बहा सकता है। हम निहत्ते इंसान अगर एक साथ निकल पड़े तो जुल्म तशद्दुद का पहाड़ रेत के घर की तरह पल भर में ठहर सकता है।
3: ये पर्दे के पीछे कौन है?
0: मैं हूं नए महाराज, आपकी दासी।
3: ओ नीलमा, आओ आओ, नाच रोक दो और जाओ। क्या खबर लाई हो नीलमा?
0: बहुत अच्छी खबर लाई हूँ नए महाराज।
3: क्या अमरावती के बारे में?
0: जी महाराज, राजकुमारी शादी के लिए रजामंद हो गई। लेकिन
3: लेकिन क्या, कोई शर्त रख दी है?
0: बस छोटी सी शर्त।
3: जरूर पूरी की जाएगी। कहो क्या शर्त?
0: महाराज और महारानी की रिहाई।
3: बस
0: और इसके साथ आर्यवीर की मौत, लेकिन अजियतनाक।
3: अजियतनाक?
0: हाँ, अमरावती के दिल में मैंने आर्यवीर के लिए ऐसी नफरत भर दी कि वो अब उनकी मौत अपने ही हाथों से चाहती है।
3: नीलमा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। आर्यवीर के लिए अमरावती के दिल में नफरत पैदा करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारी कितनी वफादार।
0: शादी के बाद आप और वो बजरे में सैर करने जाएंगे। आपका कैदी आर्यवीर जंजीरों में जकड़ा हुआ उसी बजरे में होगा।
3: फिर
0: उसकी पीठ में पत्थर बांध दिया जाएगा। राजकुमारी उस अंधे कैदी को अपने हाथों से नदी की गहराइयों में धकेल देंगी।
3: नीलमा, ये मैं क्या सुन रहा?
0: ये सच है नए महाराज। राजकुमारी अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, एक महारानी की जिंदगी।
3: तो ऐसा ही होगा नीलमा, अमरावती की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आखिर इस देश की महारानी है?
0: है नहीं नहीं महाराज, बल्कि कल होंगी।
3: जिंदा रहो नीलमा। लो ये हीरो का हार, पहन लो इसे। हमारी तरफ से ये पहला तोहफा समझो।
0: शुक्रिया नहीं महाराज, आपकी इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। दासी ने हार पहन लिया और अब चहकती फिरेगी, इतलाती फिरेगी आपकी राजभवन।

0: क्यों आ रे वीर? सुना तुमने महारानी का गीत?
1: शुक्रिया महारानी अमरावती, आपको नया गीत और नई जिंदगी मुबारक हो। अंधे कैदी की यही दुआ है कि आप यूं ही गाती रहें। प्रेमवर्धन, अब मेरे मरने में कितनी देर है?
0: इसके लिए तुम महारानी से पूछ सकते हो। मैं खुद ये तमाशा देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
2: आर्य वीर, तुम मरना चाहते हो ना? जल्द से जल्द, और हम भी तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकते। देखो, मुख्तार होते हुए भी हम कितने लाचारे हैं, कितने मजबूर। हमारी मजबूरियों को समझते हुए हमें माफ कर देना आर्य वीर, हमें माफ कर देना।
3: नीलमा, ये शोर कैसा है? ये राजभवन से आता हुआ शोर किस बला का शोर है?
2: हाँ महाराज, लोगों का सैलाब राजभवन पर टूट पड़ा है और अब इधर ही बढ़ता रहा है। महाराज,
3: क्या कह रही हो?
2: आर्य वीर, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ इस नदी की गहराइयों में उतर जाऊं। आओ अब चले यहां से, इन लहरों के नीचे।
4: वो जगमगाता हुआ शहर जहां जुल्म और सितम के भयानक हाथों ने दो मुकद्दस रूहों का गला घोंट डाला है, आज मेरे अंदर चुपचाप सोया हुआ है। लोग समझते हैं मैं मर गया हूं, मेरा नाम निशान मिट गया है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। आज भी मेरे अंदर वो शहर यहां से वहां तक दूर दूर फैला हुआ है। जब शाम के साए गहरे हो जाते हैं तो मेरे अंदर ये शहर जाग उठता है। इसकी रंगशाला में आर्यवीर का कोई नाटक खेला जाता है। अमरावती के गीत राजभवन की चार दीवारी से बाहर शहर की गलियों में गूंजने लगते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और भूपेंद्र की आवाज़ों में आप सुन रहे थे धर्म कांटा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था नौशाद ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश मजरू सुल्तानपुरी का लिखा है गीत फिल्म दोस्ती से, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था एस डी बर्मन ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में सुनिए धर्म करम फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू, मौसीकार आर डी बर्मन।

जी है, वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाजात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौकफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के कलीदी एतबार से यकसा मौकफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका क्लीदी एतबार से यकसा मौकफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह से खांगचेंग जोंग के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खांगचेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खांगचेंग जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी अदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरूनी मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैनाइश की जांच के निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकिज के रोल को उसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सारिफिन के उमूर की वजारत ने बताया है कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकिज को वजन और पैनाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाजत होगी। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीजें पेश की हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। इससे पहले सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फूट पड़ने के बाद इसे बैन अलाक़वामी तशवीश की एक सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। 6 रोजा 79वें आलमी सेहत असेंबली का इजलास जिनेवा में खत्म हो गया है, जिसमें मेंबर मुल्कों ने इंसानी सेहत के तहफ्फुज में कसीर रुखी इश्तराक को आगे बढ़ाने की खातिर कई करारदादें मंजूर की हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम अज कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए।

0: यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और यह वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम से कम 82 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्षी सूबे में ल्यूशेनह्यू कोयला कान में हुआ यह गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को यह सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी में आज नमस्कार अक्षत चावला का। साथियों, आज रविवार का दिन है, 24 मई, और ये जो मई का महीना है इसमें इतनी गर्मी होती है कि हर कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, और निकलते भी हैं तो बड़े एहतियात के साथ, साथ में पानी रखते हैं, कोई गमछा या कोई साफा टाइप का कपड़ा साथ में मुँह ढक के निकलते हैं, और समय समय पर कोई ठंडी शरबत या फिर लस्सी छाछ जैसी चीज़ें पी जाती हैं, कभी कैरी का पन्ना पिया जाता है। तो ये चीज़ें खाने पीने में तो मज़ा आता है, लेकिन जब बाहर निकलना पड़ जाए घर से तब तकलीफ़ होती है, खासकर तब जब नौतपा जैसे 9 दिन चल रहे हों, लू बहुत भयानक चल रही हो और अलर्ट जारी हो गया हो, तब इंसान को महसूस ज़रूर होता है कि ये गर्मी क्यों है। और जो तकलीफ़ होती है गर्मी में, ख़ासकर उन लोगों को जो गरीब हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, असली मार तो उन पे पड़ती है। मगर किया क्या जाए, सोचने का विषय तो ये है। साथियों, जानते हम सब हैं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है, अल नीनो इफ़ेक्ट है, लेकिन ये सब जो धरती के क्लाइमेट में परिवर्तन आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, इसकी वजह भी तो इंसान ही है। इतने सालों से औद्योगिकीकरण होता रहा और प्रदूषण होता रहा, साथ ही धरती का जो पानी है उसे भी हम ख़राब करते रहे, पेड़ काट

रहे अंधाधुंध, सिर्फ इसलिए कि लकड़ी ज़्यादा मिल जाए, घर सुंदर बन जाए, फर्नीचर अच्छा बने। जिसके पास पैसा है या पैसा था, उसने इसकी शुरुआत की और देखा देखी सभी घरों में इन फर्नीचर्स को बनाने की होड़ लग गई है। अब कोई प्रकृति वाला जीवन जीना नहीं चाहता। देखते हैं हम, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ लोग जो बेंगलोर दिल्ली जैसे शहरों में रहकर ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वहाँ के शोर से, प्रदूषण से, तो वो सोचते हैं कि गांवों की तरफ वापस लौटा जाए। तो आजकल कई ऐसे घर मिलेंगे जो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने हैं, जहाँ पर बिजली नाम मात्र इस्तेमाल की जा रही है, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर जिया जा सकता है। ऐसा वो उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? सोचने का विषय है। शहरों में रहते हुए हमारे लिए ये सब कुछ करना आसान भी है, मगर बात है इच्छा शक्ति की। वो इलाके जहाँ पर पेड़ ज़्यादा लगे होते हैं, उन शहरों में जाना हमें पसंद आता है। चंडीगढ़, पुणे ऐसे शहर, इंदौर ऐसे शहर जहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, वहाँ पर कौन नहीं जाना चाहता। वहाँ पर सबको अच्छा लगता है, क्योंकि 2 मिनट अगर बाहर खड़े कहीं खड़े भी रहना पड़ जाए तो परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम जिस भी शहर में रह रहे हैं, मरुस्थल में भी क्यों न रह रहे हों, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मत करें, मगर अपने लिए तो कर लें, दूसरों के बारे में सोचकर ना करें चाहे, लेकिन अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाएं, शांति महसूस होगी। और फलदार पेड़ लगाएंगे, जैसे कि जामुन के पेड़, तो 4-5 सालों में अगर वो फल देने लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक गीत भी है, पेड़ हमें देते हैं छाया, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये कुछ बातें हैं, अगर हम करेंगे तो हमारा ही फायदा है। और आजकल तो बड़ी दुविधा की बात है कि हम जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो हैंग हो जाते हैं, वो अटक जाते हैं, चलना बंद हो जाते हैं। और हम खुद ये एक्सपेरिमेंट ये करके देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे जाकर उस फ़ोन को अगर रखें तो तापमान कम महसूस होगा, वो फ़ोन भी चलने लग जाता है। एक पेड़ के नीचे 40 डिग्री के करीब तापमान मिलता है, और पेड़ से थोड़ा दूर हम 1 मीटर की दूरी पर भी जाएं तो 50 डिग्री तक का तापमान मिलता है। इतना फ़र्क आ जाता है। तो फ़र्क तब आएगा जब हम पेड़ लगाएंगे, और एक प्रथा अगर हम शुरू कर दें कि घर में किसी के जन्मदिवस पर कम से कम ज़िंदगी में 5-7 पेड़ लगाएं, तो भी बहुत बड़ी बात है। और अब जब बारिश का मौसम आएगा, घूमने जाएंगे लोग, जा भी रहे हैं पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ पर एक आधा पौधा अपनी गाड़ी में रख लें और वहाँ पर लगा दें जहाँ मिट्टी गीली है और बरसात तो हो ही रही होती है, तो वो पौधा अपने आप पनप जाएगा। तो प्रकृति के लिए और खुद के जीवन के लिए ये दूरदृष्टता बड़ी काम आएगी। साथियों, बातें इसी तरह हम करते रहेंगे। फिलहाल एक गीत सुनते हैं,

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो साथियों, बात हम कर रहे थे कि किस तरह गर्मी है और उसमें अगर पेड़ लगाए जाएं तो राहत मिलेगी और वो बहुत ज़रूरी भी है। इसी लय में हम बात करते हैं हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मरुस्थल है यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है, असहनीय होती है। लेकिन एक सुकून की बात ये होती है कि वो इलाके जहाँ पर रेगिस्तान भले ही हो मगर कंक्रीट का जंगल ना हो, यानी कि ये जो मकान है पक्के, अगर ये कम होते हैं तो फिर गर्मी जो है कम महसूस होती है। तापमान ज़्यादा होने पे भी घुटन वाली गर्मी और तपिश वाली गर्मी कम महसूस होती है, क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं। जितने ज़्यादा पक्के मकान होते हैं उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर हीट ट्रैप होती है, यानी कि जो गर्मी है वो अंदर ही अंदर बनी रहती है, तो तापमान ज़्यादा महसूस होता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो खुले इलाकों में सुकून है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान भी चलाया ताकि वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ के लगभग पेड़ लगाए जा सकें। और इस अभियान की शुरुआत वैसे तो 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दूदू ज़िले में गाहोता में एक पीपल का पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की, और एक पेड़ माँ के नाम के अभियान से प्रेरित होकर मिशन हरियालो राजस्थान अगले 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखता है। इसके अंतर्गत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान को हरा भरा बनाया जा सके, जो वन क्षेत्र है उसका विस्तार किया जा सके, क्योंकि वनों का विस्तार होगा तभी पर्यावरण में जो स्थायी परिवर्तन है वो आ पाएगा। जो क्लाइमेट चेंज होगा वो वनों के कारण ही हो पाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बना रहे इसलिए किया जाता है ये अभियान ऐसे। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो जैव विविधता है उसका भी संरक्षण होता है, साथ ही ये होता है कि डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण वो भी रुकता है, मृदा संरक्षण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहती है, वो बंजर नहीं बनती है, और साथ ही वो मरुस्थल की भूमि में नहीं परिवर्तित होती। तो अगर पेड़ लगे रहेंगे तो मिट्टी भी बची रहेगी। तो ये सब कुछ बातें थी युवाणी में, हम ऐसी जानकारी हमेशा आकाशवाणी आपको देता है। तो ये योजनाएं हैं जिन्हें सरकार लागू करती है, उस पर काम किया जाता है, लेकिन अब जैसे कि ये लक्ष्य था कि इतने पेड़ लगाए जाएंगे तो 2024-25 में 7 करोड़ पेड़ लगाए गए। अब उन पेड़ों का जो संरक्षण है वो आम नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार जब कहीं पर पेड़ लगाती है तो संबंधित विभाग भी उसकी देखभाल का प्रण लेते हैं और कोशिश भी करते हैं। अखबारों में जब ये जानकारी आती है कि इस जगह पर ये पेड़ लगाए गए या इस स्कूल में लगाए गए, तो फिर वहाँ पर आम जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार अपना काम कर देती है, विभाग काम कर देती है, लेकिन इतने सारे पेड़ों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं सरकारी तंत्र? इसलिए आम जन को जब अखबार में हम ये पढ़ते हैं या कहीं से भी जानकारी हमें मिल जाती है कि वहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, तो वहाँ के आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन पेड़ों की देखभाल करें ताकि वो पेड़ जीवित रहें। वरना होगा ये कि पेड़ तो लगा दिए जाएंगे मगर पानी के अभाव में, देखरेख के अभाव में, या तो उन्हें जानवर खा जाएंगे और या फिर वो खुद ही पानी की कमी में सड़ जाएंगे। तो उस अभियान का जो फ़ायदा होना चाहिए वो लंबे समय में फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और

अभियान किसके लिए है? सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए नहीं है, ये दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो आम जन के लिए ये योजनाएं चलती हैं, तो आम जन को इसके लिए सजग होकर कोशिश भी करनी होगी। तो साथियों, बातें इसी तरह करते रहेंगे, हम एक गीत और सुनते हैं।

0: हॉस्टल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, ये जो जीवन हमें मिला है ये खूबसूरत बनता है जब हम प्रकृति के साथ जीते हैं। इसलिए इन सब अभियानों की चर्चा होती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं ताकि हम चीज़ों को समझें और जीवन को बेहतर बनाएं। और आकाशवाणी परिवार में, खासकर युववाणी कार्यक्रम जो युवाओं पर केंद्रित है, उसमें तो वही जानकारी मिलती है जो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ऐसे ही एक अभियान की शुरुआत हुई थी जिसे हम नशा मुक्त भारत अभियान कहते हैं, और इसके बारे में चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि युवा जो है जब नशे की चपेट में आ जाते हैं तो किसी भी देश का भविष्य दांव पर लग जाता है। अक्सर नशे की शुरुआत होती है पीयर प्रेशर, यानी कि साथी लोग कर रहे हैं किसी प्रकार का नशा, तो उसी वजह से दूसरे व्यक्ति जो दोस्त हैं तो वो भी उसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर कि करके देखते हैं, ये भी करके देखना चाहिए इस सोच के कारण, या ये समझा जाता है कि अगर कोई सिगरेट पीता है, शराब का सेवन करता है तो वो कूल है, जबकि ऐसा नहीं, वो तो फूल है, यानी कि मूर्ख है। नशा न तो किसी के लिए अच्छा है और न कभी अच्छा होगा, क्योंकि ये शरीर को धीरे धीरे खराब तो करता ही है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। नशे का तो अर्थ यही है कि जिस चीज़ की आदत हो जाए जिसके बिना रहा न जा सके। हम आहार के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकते, उतना ही ज़रूरी नशा करने वाले लोगों के लिए नशा हो जाता है, और तकलीफ तब शुरू होती है। अगर कभी कभी कोई नशा करता है तो उसे इन चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो महसूस नहीं हो पाते, इसलिए वो धीरे धीरे करते उसे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और जब बढ़ते जाती है ये आदत तब तकलीफ बढ़ जाती है, तब नशे की चपेट में इंसान पहुंच जाता है। तो शुरुआत कभी कभी करने से ही होती है, तो अच्छा तो ये होगा कि हम कभी भी नशा करें ही नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य ये था कि शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि वहाँ के विद्यार्थी मादक पदार्थों के सेवन न करें और जागरूक बने कि किस तरह से ये जो व्यसन है ये हमें नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही इस अभियान का ये भी लक्ष्य रहा कि आबादी की व्यसन करने वाली आबादी की पहचान की जाए और परामर्श किया जाए उन व्यक्तियों से, और साथ ही उनके उपचार के लिए सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए, और जो सुविधाएं हैं उनको मजबूत भी बनाया जाए। शुरुआत में इसका ध्यान 272 संवेदनशील जिलों पर केंद्रित था, जिसे अब भारत के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया।

0: जो अभियान है इसकी वजह से जन जागरूकता हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऐप और वेबसाइट्स पर इनके बारे में जानकारी दी गई। कई स्वयंसेवी संगठन बनाए गए और उन लोगों के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई गई। भारत में जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग व्यापक हो रहा था, एनडीपीसी अधिनियम 2019-21 के तहत कई सारी एफआईआर दर्ज करवाई गई और नशीले पदार्थ जैसे कि भांग, ओपियोइड यानी कि अफीम और अफीम से बनी हुई चीज़ें और दवाइयाँ, उन दवाइयों का भी गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ये अभियान चलाया गया। साथ ही विश्व के जो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ से तस्करी की जाती थी, तो उस पर नियंत्रण लगाने के लिए ये अभियान बड़ा कारगर साबित हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नशीली दवाएं हैं ये संगठनात्मक संरचना यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बन रही हैं, तो उन पर अगर हम रोकथाम लगाएंगे, उनकी जानकारी सरकार को देंगे, तो इससे जनता में बहुत ज़्यादा जागरूकता भी होगी, भला होगा और हम भी बच पाएंगे। हमारे देश को तरक्की करनी है तो युवाओं को मजबूत होना चाहिए, युवाओं को नशे से बचना भी चाहिए। समस्या ये है कि लगभग इन्हीं बातों पे चर्चा होती है जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जानते हैं लेकिन फिर भी गलती करते हैं, यही अफसोस की बात हो जाती है। अब एक ऐसा समय है जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, तो हमें ये जानना होगा कि फिजूल खर्च नहीं करना है, और ये जो नशे हैं ये तो ऐसा फिजूल खर्च है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है इंसान का। तो इनसे बचे रहेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहेगी, वरना तकलीफ़ें ही तकलीफ़ हैं। साथियों, बातें इसी तरह करते रहेंगे हम। फ़िलहाल एक गीत सुनते हैं।
1: नशा ये प्यार।

तो साथियों, अभी इस गीत ने में भी यही बोला कि नशा करना है तो प्यार का नशा होना चाहिए, और नशा हो तो जुनून का भी हो, नशा हो तो अच्छा जीवन जीने की इच्छा का हो, और नशा हो तो फिर लोगों की मदद करने काम आने और ज़िंदगी को अच्छा बनाने का होना चाहिए। अगर हमें जुनून का नशा है तो फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि महान लोगों ने किया। एडिसन का हम नाम जानते हैं, जिसने न जाने कितने आविष्कार किए और दुनिया की ज़िंदगी को आसान बनाया। हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्हें पढ़ाई का इतना जुनून था कि वो उसी पढ़ाई में खोए रहे और इसी वजह से आजीवन अवैवाहिक भी रहे, और अपने देश के प्रति उनका जो समर्पण है, जो प्यार है, जिसे आम तौर पे हम नशा भी कह सकते हैं, तो ये जो प्यार का नशा है, ये जो देशभक्ति का जुनून है, यही असली नशा है। यही नशा हमारे जीवन में होगा तो हमारी तरक्की होगी और जीवन खूबसूरत बना रहेगा, वरना ये जो मादक पदार्थ हैं उनका नशा और जो ड्रग्स का नशा है, ये तो ज़िंदगी नष्ट ही कर देता है। ज़िंदगी का असली मज़ा किसमें है, ये तो तब समझ में आएगा जब हम इस तरह से जीवन जी कर देखेंगे। जो नशे की चपेट में आ गया उसका तो जीवन सचमुच बेकार ही है। उससे लोग परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी परेशान, पर जब हम दूसरों के काम आते हैं, किसी की ज़िंदगी को संवारते हैं, तो अपने हृदय में, अपने दिल में बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो सुकून की ज़िंदगी होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, और यही जो प्यार है वही आपस में जोड़ के भी रखता है, ज़िंदगी को आसान भी बनाता है। हम देखें कि हमारा देश भारत, जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बचपन में लेख भी हमने कई लिखे हैं, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेज़ी में, और कभी मंचों से हमने भारत के विषय में बात भी की कि भारत वो देश है जहाँ विभिन्न जाति, समुदाय और धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, और यही एक

एकता भारत को अखंड बनाए रखती है और विश्व पटल पर एक ऐसा मुकाम भारत को हासिल है जो किसी दूसरे देश को नहीं। कारण सिर्फ यही कि आपस का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो सद्भाव है, वही हमारे देश की जान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो मंत्र है, ये जो नारा है, जो भारत की संस्कृति का हमेशा अभिन्न हिस्सा रही सदियों से, वो इसीलिए था क्योंकि जब इंसान अपने अंदर प्रेम महसूस करता है और वो प्रेम बांटता है तो वो खुद भी खुश रहता है और दूसरे भी खुश रहते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, तो महात्मा बुद्ध का उत्तर था कि क्रोध वो एक जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के लिए हैं, मगर दूसरा तो बाद में जलेगा, पहले आप खुद जलते हैं, आपके हाथ जल जाते हैं। उसी तरह नफ़रत या कोई भी नेगेटिव थॉट्स, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये सब वो भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। कितने ही मरीज डॉक्टर देखते हैं तो ये पाते हैं कि उनके अंदर जो इमोशंस के, भावनाओं के गुबार दबे हुए हैं, किसी के प्रति नफ़रत है, वो उनको अंदर ही अंदर खाते जाते हैं और कई लोग तो इसकी वजह से मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। उनको फिर दवाइयाँ देनी पड़ती है और फिर भी वो ठीक नहीं रह पाते। तो ये जो प्रकृति ने हमें सौम्यता दी है, अच्छी भावनाएं दी है, ये बड़ी कीमती हैं, यही जीवन का आधार हैं। तो अगर हम ये समझेंगे कि एक फूल अगर हम किसी दूसरे को देते हैं तो उस फूल की खुशबू पहले हमारे हाथों में आएगी, उसी तरह अगर हम प्रेम बांटते हैं तो पहले हमारा हृदय प्रेम से भरेगा, हम उस प्रेम को महसूस करेंगे। हम अगर किसी की मदद करते हैं तो पहले हमारा हृदय खुश होगा कि मैंने किसी की मदद की। इसलिए ये जो भावनाएं हैं ये सचमुच में कीमती हैं, इन्हीं पर हमारा जीवन आधारित हो तो जीवन खूबसूरत होगा। अक्सर कहा जाता है कि आज के ज़माने में शिक्षित तो बहुत लोग हैं, पढ़ लिख तो बहुत लोग लेते हैं, मगर एक अच्छा इंसान बनना वो विरला ही दिखाई देता है। जब एक इंसान नेक इंसान होता है, दिल से अच्छा इंसान होता है, तो उसका कभी बुरा नहीं होता, दुनिया मदद को पहुंच जाती है, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और जो होता है फिर अच्छा ही होता है। तो साथियों बातें इसी तरह करते रहेंगे, फिर एक गीत सुनते हैं।

तो साथियों, इस गीत में भी यही बोला गया है कि गीत गाता चल और गुनगुनाता चल। सचमुच संगीत जो है वो जीवन को बड़ा खूबसूरत बना देता है। जब संगीत वाला जीवन होता है तो एक सुकून हृदय में महसूस होता है। यही कारण है कि भारत में लोकगीत जो बने वो लोकगीत दुनिया भर में सराहे गए। भारत के गीतों में और विदेश के गीतों में एक बहुत बड़ा फर्क है, ऐसा कहा जावेद अख्तर ने एक जगह पर, क्योंकि विदेशों में जो गीत बने वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचे। खासकर फिल्मी गीत भी जो हम सुन रहे हैं इस समय भी आकाशवाणी के सूरतगढ़ कॉटन सिटी चैनल से, पूरे आकाशवाणी परिवार में जितने भी केंद्र हैं सभी से फिल्मी गीत भी सुनाए जाते हैं, लोकगीत भी सुनाए जाते हैं। लोकगीतों के इतने प्रकार होते हुए भी फिल्म संगीत भारत में इसलिए अपनी पैठ बना पाया क्योंकि भारत में ये जो बनने वाले फिल्मी गीत हैं ये लोगों की जबान पर चढ़ जाते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। यहाँ पर गीत बनते हैं, साइकिल पर चलता हुआ व्यक्ति भी वो गीत गुनगुनाता है और महिलाएं घर में काम करते हुए भी रेडियो सुनती हैं और वही गीत गुनगुनाती हैं। बच्चों के लिए भी गीत बने और खेतीहर, खेत में काम करने वाले मजदूर या फिर किसान सब सुनते हैं। वो गीत फिल्मों के हों या लोकगीत हों, लोगों की ज़बान पर है। कब काम पूरा हो जाता है गीत सुनते सुनते पता ही नहीं लगता। और आजकल तो

डिजिटल मीडिया की वजह से, जिसका फ़ायदा आकाशवाणी परिवार ने सबको दिया। प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर कहीं बैठे भी आकाशवाणी से जुड़ा जा सकता है, गीत सुने जा सकते हैं, जानकारियां ली जा सकती है। तो ये सब इसीलिए हुआ कि जो संगीत है वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रकृति के कलकल में है संगीत। जब नदी बहती है तो जो आवाज़ आती है, कलकल की ध्वनि, वो भी संगीत है। बच्चा रोता है तो उसमें भी संगीत है। किस तरह से लोरियां सुनाई जाती है बच्चे को सुलाने के लिए, वो भी संगीत है। और जब एक तारा बजता है, संतूर या दूसरे वाद्य यंत्र बजते हैं, यहाँ तक कि मटके से संगीत निकलता है। दो लकड़ी के टुकड़ों से संगीत निकाल लिया जाता है। तो जो लोकगीत हैं उनमें तो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता रहा है। और आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं लोकगीतों से जुड़े।

यहां तक कि मटके से संगीत निकलता है, दो लकड़ी के टुकड़ों से संगीत निकाल लिया जाता है। तो जो लोकगीत हैं उनमें तो अलग-अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता रहा है, और आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोकगीतों से जुड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और लोगों को सुनने को भी मिलता है और लोकगीतों को भी बढ़ावा मिलता है। सुनने चाहिए, आज भी लोग हैं जो लोकगीत सुनते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि लोकगीत जो है वो कम सुने जाते हैं, बराबर सुने जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में सुने जाते हैं, विदेशों में सुने जाते हैं। इसी तरह लोक नृत्य हैं, राजस्थान की संस्कृति में भी ऐसे लोकगीतों और लोक नृत्यों का बड़ा महत्व रहा, और केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, ये तो राजस्थान का राज्य गीत है और फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। ये लोगों के स्वागत के लिए इस गीत का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये जो गीत हैं ये भारत के लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए तो जब बातें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो सुनने वाले श्रोताओं के मन में होता है कि गीत कब आएगा। तो आ रहा है गीत, सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, कार्यक्रम के अंत में एक बात और कि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो करें क्या। ये समय ज़ाया नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और फ़ोन से बच्चे चिपके नहीं रहने चाहिए। खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। इंडोर गेम्स से उनका परिचय कराएं, जैसे कि चेस, लूडो, शतरंज यानी चेस एक ही बात है, और कैरम बोर्ड। ये जो गेम है जो हमने अपने बचपन में खेले, घर परिवार में जो भी बच्चे हैं उनके साथ बैठकर खेलें। और साथ ही ये जो कार्यक्रम है जिनकी हमने बात भी की कि पेड़ लगाने चाहिए, तो वो सब उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा ही होता है, एक अच्छी आदत बन जाती है। साथ ही समर कैंप्स के आयोजन होते हैं तो उनमें भी बच्चों को भेजना चाहिए, कुछ अलग आर्ट की चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे थोड़ा आर्ट से दूर होते जा रहे हैं। कुछ वाद्य यंत्र सिखा सकते हैं, सिंगिंग सिखा सकते हैं, या फिर कैलीग्राफी, पेंटिंग जैसी जो क्लासेस होती हैं उनको हफ्ते दो हफ्ते के लिए ज्वाइन करवा देना चाहिए, कि इससे बड़ा फ़ायदा होता है। जो कलाकार होता है वो हृदय से भावनात्मक बन जाता है, तो भावनाओं को महसूस करने वाले होते हैं कलाकार, इसलिए ये कैंप्स जो हैं वो भी ज्वाइन कराने चाहिए और बच्चों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अभी चलते चलते एक गीत सुनते हैं फिल्म मोहब्बतें से।

अभी वास्ती सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन AIR पर। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।

श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सरायकी। संध्या 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:00 ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे देश हित में कुछ बातें, भेड़ व बकरी की देसी नस्ल, धान की उन्नत किस्में। इसके अलावा आप सुन पाएंगे एक वार्ता, जैविक खेती। वार्ताकार होंगे विश्वास शर्मा। इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।

संध्या 7:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर कार्यक्रम होगा स्पोर्ट्स कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुन पाएंगे News@9। ये तीनों कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोप इंग्लिश। रविवार या संगीत सभा आप सुन पाएंगे रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। और आज की हमारी ये सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर।

0: चीकू ढक दे। 5-7 मिनट दे बाद ढक्कन खोल के दे गिनो के टुकड़े दाल गल गई है ता उन्दे च कद्दूकस कीता होया टमाटर ते कटी हुई हरी मिर्च पा दो। थोड़ी देर भुनन दे बाद उन्दे च भी पानी पा दो। तरी जियो जी तुसा खांदे हो, पतली तरी खांदे हो ता थोड़ा ज्यादा पानी पाओ, अगर घट तरी खांदे हो ता उन्दे च थोड़ा जिया पानी पा दो। 10 मिनट तक तरी पकन दो। जिवें तरी पक वैसी ता उन्दे बाद थोड़ा गरम मसाला कटा होया हरा धनिया भी पा दो। हुण तरी आली चने की दाल दे करेले ते दी सब्जी तैयार है। ये सब्जी जितनी खावने च स्वाद है उतनी ही सेहत वास्ते भी वधिया है। हुण असा बने सू करेले दी छील दी सब्जी। छील जड़ी असा तुसा करेले छील के रखे हैं वह पानी चू काढ़ गिनो। तो करेले प्याज ते आलू दी भुर्जी, इको आधन करेले प्याज ते आलू दी भुर्जी। भुर्जी बनावन वास्ते साकू चाहीदियां हन करेले दी छील, एक प्याज छोटे छोटे टुकड़े किया होया ते एक आलू उन्दे भी छोटे छोटे टुकड़े कर गिनो। थोड़ा जिहा अमचूर ते अद्धा चम्मच पिसा होया सौंफ। हुण कढ़ाई गैस ते रख के उन्दे च सरसों दा तेल, ये सब्जी सरसों दे तेल च ही बनी सू, सरसों दा तेल पा गिनो। हुणी तेल च कटे हुए प्याज दे टुकड़े पा दो। जिवें ही प्याज थोड़े जिए लाल गुलाबी थी वजन कटे हुए आलू दे टुकड़े कढ़ाई विच पा दो। हुण इंदे च लून जितना तुसा खांदे हो, लाल ते हरी मिर्च पा दो ते अद्धा चम्मच हल्दी पा के प्लेट नाल ढक दो। थोड़े जिहे आलू गल वजन ता इंदे विच करेले दी छील पा के ढक दो। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला के उकू डेढ़े रहो कि सब्जी तैयार थी गई है कि नहीं। जे वेले सब्जी तैयार थी वजे ते पानी सुक वजे, चंगी तरह पानी सुक वजे ता गैस बंद कर दो। हुण ई सब्जी विच थोड़ा गरम मसाला ते थोड़ा अमचूर दा पाउडर भी पा दो। हुण ई सब्जी गरम गरम पराठे दे नाल खा के मजा खिन सकते हो।
1: सिराइकी खाना खजाना विच हुणे तुसा इक चने दी दाल ते करेले दी सब्जी ते दूजी करेले दी छिल ते आलू प्याज दी भुर्जी किवें बनावनी है इस उते वार्ता सुनदे पए हवे। वार्ताकार हन कमलेश कुमारी। तरीका तुसा समझ लिया, हुण बनाओ आप भी खाओ ते मेहमाना को भी खुआओ। ते हुण जुलदे हां गीता वल को। गीत बहु मजेदार है। गीत तो पहला एक शेर उस तो भी मजेदार है। मैं तप दियां गलियां विच फिरदा दीदार तेरा दरकार वे तू, दुनिया दी ना कोई लोड़ माही हिक तेरा चाहिदा प्यार मेकू। ते गीत है तेरे इश्क ने सांवल यार मस्त मलंग कीता।

हे गीत जो तुसा सुनिया है ना, मेको आप बहु पसंद है। मेरा ख्याल है तुहा को भी पसंद आया हो सी। सुना लियो, प्यार ता निभावन दी गल ले, सारा नाल ता निभदी नहीं। प्रोग्राम दा आखरी गीत कुछ एहो जिया ही है। लाहे गवा साड़ी नहीं निभदी, तेरे सिवा साड़ी नहीं निभदी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी

0: अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल डीजल CNG LPG LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा

0: पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले

0: में कई गतिविधियां होंगी। यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों, ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धम्बोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। TAD उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुईं। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणना घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में कालेओ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति

0: 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घन करा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बन्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में कालेऊ जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व माना जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत वेला। गंगा दशमी सरोवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथ समाचार कक्षों मारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण

0: Arni. સમાચાર રે સાથે મેં શંભુ સિંહ અરબે સમાચાર વિગતવાર પ્રદેશમાં કાલે હું જલ સંરક્ષણને જન આંદોલન બનાવણ કાની મહેતવ માન્યા જારિયા વંદે ગંગા જલ સંરક્ષણ જન અભિયાન રી શરૂઆત વહેલા ગંગા દશમી સરુવેરિયો ઓ અભિયાન 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તાઈ ચાલેલા ઓર બ્યોરો સાથે સમાચાર કક્ષું મારા સહયોગી જીતેન્દ્ર પ્રધાન
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ये नीति रहते तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाने वाली 32 सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी गया है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारा में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जाने वाली सब्सिडी बढ़ावणु प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला। इणु उत्पादन बूतो बढ़न रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इणरे साथे ही स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देवण सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 महत्व बदलाव करी गया है। इणरे तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारों रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएला। साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन ही वह सकेला। उद्योग महकमा कानियों काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाइया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जाएला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवण रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ ने देखियो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में वी बतल में आथुणी एशिया संकटों पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इनरे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है। वणा कहो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन रा चोखा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजनाओं देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथे सामरिक और माली हिफाजत में महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेटों लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का में अगाड़ी बनावण में मदद करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट में रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वना एहलकारा ने निर्देश दिया कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश में नोडल एहलकार नियुक्त करया जावे जिणो काम में तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेरू सुन रिया हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया जठे वणा हमीरगढ़ हवाई पट्टी रो जायजो लियो।

0: इन रेपा छे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का माए भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर माए कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नविशा ने बतल माए भीलवाड़ा माए कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामे राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वणा कयो के इन लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और मापरी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र GATC री भूमिका रो पसारो करेला। ई सारू साल 2013 रा कायदा माए बदलाव करी जो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माए GATC वजन और मापरी 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माए पेट्रोल डीजल CNG LPG LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच ही भेली है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो और तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज हुआ एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधिपूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कहो के विश्वविद्यालय कान्यों स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मोमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़िया नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ये मुहिम माए हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर रा SMS स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़ जैसलमेर राजसमंद कोटपुतली बहरोड सलूम्बर बालोतरा झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहने रो संदेश दे रिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इनो जोड़ ने योगा अभ्यास जुम्बा रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। अबे मौसम

0: इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राज्य राघण करा हल्का माए मौसम साफ रेवण एर धूल भरी हवा चालन तापमान माए 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वारी आस जताई है। 26-27 मई ने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए 32 तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठे 28-29 मई एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ असर प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी और कठे कठे बिरखा होने री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणियों हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आपरा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई तई आपरा राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप एर माई GOV ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए काल्यों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माए खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाने वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। अर प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करडी गर्मी अर लूरो असर बनेड़ो है। आपता कुछ दिन राहत रा आसार नी। नेंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुत करता है मुकेश चावरिया।

सुनियो भाई लोगों, भजन बात करा आपां खेती बाड़ी की। तो जी आज आपा बात करा कंपोस्ट खाद के बारे में। इमें आपां केंचुआं की मदद से कम टाइम के मान बढ़िया खाद तैयार कर सका। किसान भाइयों, केंचुआं की खाद ना आपा वर्मी कंपोस्ट खाद भी कहवा, क्योंकि आ एक जैविक खाद है और फसल माटी खातर ज़्यादा उपयोगी है। इंगो एक ओ भी फायदो है कि इमें आपनों 300 टको भी कम लगे और फसल ने की भी तरियांगो कोई नुकसान भी कोनी होवे। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वास्ते आपां तापमान और नमी को ध्यान रखना जरूरी है। यानी जकी जिग्यां पर कंपोस्ट खाद को टैंक या खुरली बनानी है, बी जिग्यां को तापमान और नमी ठीक होनी जरूरी है। इनके अलावा टैंक पर अस्थायी छपरो या शेड भी बनाना जरूरी है, ताकि गर्मी सर्दी बरसात शू खाद और केंचुआ ना आपा बचा सका। अब बात करा आपा टैंक बनाने की विधि यानी तरीके के बारे में। इंगे माँ आपा अनुमानित टैंक या फिर खाद की मात्रा के हिसाब से छोटो मोटो भी कर सका। मोटे तौर पर जिया 1 मीटर चौड़ो, आधो मीटर गहरो और 10 मीटर के लगभग लंबाई में टैंक तैयार करना है। खाद तैयार करने खातर सामग्री के रूप में आपा वनस्पति कचरो जिया फसली कचरो, घास फूस, सड़ी गली सब्जियां, फल फ्रूट का छिलका और पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, पशुओं के ठाण में बचेड़ो नीरो हरियो चारो, इनके अलावा पशुओं के गोबर की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, सूखो कचरो आपा पहली गोबर के घोल में 15 दिन तक सड़ा के फिर ही खाद के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि कचरे की गर्मी खत्म हो जाए। क्योंकि कई बार यह हो कि आपने किसान भाई लोग ताजो कचरो नाक देवे, बीच उमस पैदा हो जाए और फिर आपने केंचुआ की मौत होनी शुरू हो जाए। तो इन बात को विशेष ध्यान रखना है। इन तरिया आपा 6 इंच मोटी परत बना के ठंडो हेड़ो गोबर नाक देवा। इनके बाद किसान भाइयों, जबकि आपा गोबर की परत लगाई है, बिंगे ऊपर 500 से 1000 केंचुआ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से छोड़ देवा। तो इन तरिया आपा केंचुआ से बढ़िया वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सका। लेकिन किसान भाइयों, केंचुआ खरीद करने से पहली आपा बढ़िया नस्ल का या किस्म का केंचुआ को ही चुनाव करना है। जहाँ बात करा आपा बढ़िया प्रजाति के केंचुआ में आइसिनिया फोइटिटा, यूड्रिलस यूजिनी और परियोनिक्स एक्सावेटस, एक केंचुआ की बढ़िया प्रजाति हैं। इनके अलावा आपा नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञ से भी जानकारी ले सका और बढ़िया उन्नत किस्म या प्रजाति का केंचुआ ले आगे बढ़िया खाद तैयार कर सका। किसान भाइयों, केंचुआ छोड़ने के बाद भी आपा ने एक फिट ऊंची अध सड़े और बारीक कचरे की तय लगानी है। इन तरिया कचरे को ढेर जब 2-3 फुट ऊंचो हो जाए, तो बाद में आपा इन ढेर ने ऊपर छू जूट गए बोरा छू या टाट पट्टी छू अच्छी तरह ढक देना है। किसान भाइयों, शेड में हमेशा अंधेरो बनो रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में केंचुआ ज़्यादा सक्रिय हुए। इन वास्ते शेड गए चारों मेर घास फूस या बोरा लगा देना चाहिए। बोरे के ऊपर नियमित रूप से पानी छिड़कना चाहिए और इंगे सागे सागे टैंक इशू के है कि टैंक का मान नमी जकी है वह बनी रहे। इनके अलावा किसान भाइयों, कचरे के ढेर ने 25 से 30 दिन बाद हाथ छू या कोई अन्य औजार से उल्टा पलटी करता रहना चाहिए, जगह की वजह से ढेर को तापमान और वायु संचार भी बढ़िया बने रहे। इन प्रक्रिया ने 2-3 बार दोहराव करना है और भाई लोगों, टैंक के अंदर को तापमान आपा ने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और नमी 30 से 35% तक बनाए रखनी है। मोटा तौर पर रोजीना आपने 30 से 90 लीटर पानी टैंक खातर रखना है। इन तरिया आ खाद 60 से 75 दिनों में बन के तैयार हो जाए। जिया जिया खाद तैयार होए, बिया बिया केंचुआ तले की तरफ जामता रहे, फिर आपा खाद निकाल के और केंचुआ ने फेरू काम में भी ले सका। इकट्ठी करड़ी खाद ने 2-4 दिन छिया में सुखा के नमी थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, ई खाद ने आपा बोरा में भर के 1 साल तक काम में ले सका। कंपोस्ट खाद को प्रयोग करने से कई तरह का फायदा हुआ है। जहाँ वर्मी कंपोस्ट माटी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करे और भूमि में जैविक क्रियाओं की निरंतरता बनाए रखे। इनके बारे में बातें और भी करांगा, पहला आपा सुन लिया वो गीत सुनो सा।

भाई लोगों, वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा उपयोग करना शुं भूमि जकी है बार भुरभुरी और ज़्यादा उपजाऊ बने। इनके अलावा वर्मी कंपोस्ट शुं खेत में दीमक और दूसरा नुकसान पुगावन वाला जीवाणुओं ने खत्म कर देवे। इनके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को लगातार प्रयोग करना शुं खेत में उगन वाला खरपतवार भी कम हो जाए। किसान भाइयों, जे आपा एक बार खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद नाख दी तो 2-3 फसलां तक बा खाद काम करेगी और अपनों फालतू में खर्चो भी टलेगो। भाई लोगों, वर्मी खाद से माटी भुरभुरी होना के सागे सागे माटी जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ोतरी हो जाए, जके की वजह से आप कुछ हद तक पानी की बचत भी कर सका। इनके अलावा पर्यावरण और अपना मित्र कीट भी सुरक्षित बना रहे। इसका बहुत सा फायदा है जे आप वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग करा तो, क्योंकि कंपोस्ट खाद में अच्छी फसल उपज खातर बहुत सा जरूरी पोषक तत्व हो है, जका अपनी फसल की बढ़वार और उपज दोनों में फायदो करे। जी हम बात करा आपा गोबर की खाद 6 महीना में बढ़िया खाद के रूप में तैयार होवे और गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.3-0.5% तक होवे। फास्फोरस की मात्रा गोबर की खाद में 0.4-0.6% तक होवे और पोटाश की मात्रा 0.4-0.5% तक होवे। यही कंपोस्ट खाद 4 महीना में बनके तैयार हो जाए। इनमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5-1% तक होवे और फास्फोरस की मात्रा 0.5-0.9% तक होवे और कंपोस्ट खाद में पोटाश की मात्रा 1% तक होवे। आप यहाँ कह सका कि गोबर की खाद की तुलना में कंपोस्ट खाद ज़्यादा कारगर होवे। अब किसान भाइयों, बात करें वर्मी कंपोस्ट खाद जो कि केंचुआली खाद है, बिमें नाइट्रोजन की मात्रा 1.6% तक होए, फास्फोरस की मात्रा 1.5-1.8% तक होए और पोटाश की मात्रा 1.2-2% तक होए। यानी वर्मी कंपोस्ट खाद ने आपा सर्वश्रेष्ठ खाद मान सका। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपा वर्मी कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट खाद को ही प्रयोग करा तो बढ़िया रहे। इनका सागे सागे भाई लोगों, खाद तैयार करता टाइम कहते रहे इनकी सावधानी भी बरतनी जरूरी है, ताकि आपा कम खर्च और खेचड़ में बढ़िया से बढ़िया खाद तैयार कर सका। तो बातें और करांगा, पहला आपा सुन लिया वो भजन सुनो सर।

0: भाई लोगों सुनियो भजन। और बात चल रही कंपोस्ट खाद की यानी जैविक खेती की, तो आज थारे वास्ते वार्ता लेके आया हाँ। विषय है जैविक खेती और वार्ताकार है विश्वास शर्मा। तो आओ सगला मिलर सुना आप वार्ता।
1: भाइयों, मई का महीना चल रहा है। हमारे खेतों में खरीफ सीजन की सरगर्मी बढ़ चुकी है। कोई भाई कपास की बुआई में व्यस्त है, तो कोई गवार और मूंग के लिए खेत तैयार कर रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे बिना बाजार के महंगे रसायनों के हम अपने घर पर ही खाद और कीटनाशक बनाकर अपनी मिट्टी को सोना उगलने वाली बना सकते हैं। जब हम जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना होगा। किसान भाइयों, जैविक खेती अपनाने में जो सबसे पहली और बड़ी रुकावट आती है, वह कोई बीमारी या खाद की कमी नहीं है, बल्कि वह है हमारे खुद का डर और हमारी मानसिकता। जैविक खेती अपनाने का सबसे पहला नियम यह है कि हमें हड़बड़ाहट या जोश में आकर अपनी पूरी जमीन पर एक साथ रासायनिक खादों को बंद नहीं करना चाहिए। बहुत से किसान भाई जोश में आकर अपने पूरे 10 या 15 बीघा खेत में केमिकल डालना बंद कर देते हैं। मिट्टी को सालों से केमिकल की लत लगी हुई है, तो पहले ही साल पैदावार अचानक गिर जाती है और किसान भाई घबराकर जैविक खेती का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपके पास 10 बीघा जमीन है, तो इस खरीफ सीजन में केवल 1 या 2 बीघा जमीन को ही अलग कीजिए। उस 1 बीघा जमीन को अपना प्रायोगिक खेत यानी सीखने की पाठशाला बनाइए। उस टुकड़े पर संकल्प लीजिए कि मुझे यूरिया, DAP या किसी भी रासायनिक जहर की एक बूंद भी नहीं डालनी है। बाकी की जमीन पर आप जैसे खेती कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। इससे आपका आर्थिक जोखिम बिल्कुल कम हो जाएगा और जब आप उस 1 बीघा में कामयाबी देख लेंगे, तो आपका हौसला और आत्मविश्वास दोनों मजबूत हो जाएंगे। भाइयों, मानसिक तैयारी करने के बाद अब आता है सबसे जरूरी व्यवहारिक काम, अपनी मिट्टी की जांच यानी सोइल टेस्ट करवाना। जैविक खेती शुरू करने से पहले हमें अपनी मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए हमारे श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ में सरकारी कृषि प्रयोगशालाएं हैं और हमारे नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में भी यह सुविधा उपलब्ध है। मिट्टी की जांच से हमें मुख्य रूप से 2 बातें पता चलती है। पहली यह है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन यानी जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है। भाइयों, जैविक कार्बन ही मिट्टी की असली ताकत और उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज हमारे जिले की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन घटकर 0.4% से भी कम रह गया है, जबकि

एक स्वस्थ मिट्टी में यह कम से कम 0.75% से ऊपर होना चाहिए। मिट्टी की जांच से हमें यह भी पता चलेगा कि हमारी जमीन का स्वभाव कैसा है और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या जिंक की कितनी कमी है। भाइयों, हमारे क्षेत्र में इस समय दोपहर के वक्त खेतों में पैर रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक समझदार और वैज्ञानिक सोच रखने वाले किसान के लिए यह भीषण गर्मी मिट्टी को सुधारने का एक बहुत बड़ा वरदान है। इस समय खेत खाली है तो मिट्टी पलटने वाले हल, जिसे MB प्लाऊ कहते हैं, उससे अपने खेत की गहरी जुताई करनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हमारे क्षेत्र में कपास की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान गुलाबी सुंडी यानी पिंक बोलवर्म से होता है। इस गुलाबी सुंडी के प्यूपा या कोष मिट्टी में 3 से 6 इंच तक नीचे छुपकर सो जाते हैं। जैसे ही आप मई के महीने में गहरी जुताई करते हैं, वो सारे छुपे हुए कीड़े और उनके अंडे मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। मई जून की भीषण धूप इन दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इसके साथ ही मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक फंगस और खरपतवार के बीज भी इस तेज धूप से जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी बिना 1 रुपये खर्च किए सिर्फ सूरज की धूप से आपके खेत का आधा पेस्टिसाइड का खर्चा बच जाता है। भाइयों, जैविक खेती में हम बाजार की बोरी वाली यूरिया नहीं डालते। इस समय जिन खेतों में आपको जून के अंत में या जुलाई में बुआई करनी है, उन खाली खेतों में आप अभी मई के मध्य में ढेंचा या सनई की बुआई कर दीजिए। जब यह ढेंचे की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए, यानी उसमें फूल आने से ठीक पहले, आपको उस पर रोटावेटर या हैरो चलाकर उसे वापस उसी मिट्टी में काटकर दबा देना है। भाइयों, ढेंचा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी जड़ों में ऐसे जादुई बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी के अंदर फिक्स कर देते हैं। जब आप इस हरी भरी फसल को मिट्टी में दबाते हैं तो यह मिट्टी में सड़कर प्रति बीघा लगभग 10 से 15 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और भारी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन यानी ह्यूमस मिट्टी को मुफ्त में दे देती है। इसके बाद आता है तीसरा काम, जिसके बिना जैविक खेती अधूरी है। वह है गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का सही इस्तेमाल। यहाँ पर हमारे बहुत से किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे रूढ़ी से कच्चा या आधा सड़ा हुआ गोबर ढेर से उठाते हैं और सीधे खेत में बिखेर देते हैं। भाइयों, जैविक खेती में यह गलती कभी मत करना। कच्चा गोबर खेत में डालने से उसमें मौजूद कीड़े और दीमक आपके खेत में फैल जाते हैं, जिससे बाद में नरमा या ग्वार की जड़ें कटने लगती है। हमें हमेशा पूरी तरह से सड़ी हुई, ठंडी और बिल्कुल काली पड़ चुकी गोबर की खाद या फिर केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो प्रति बीघा कम से कम 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी खाद की ज़रूरत होगी, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 5 क्विंटल प्रति बीघा काफ़ी है। इसे डालने का सबसे सही समय जब आप हरी खाद यानी ढेंचे को मिट्टी में दबा रहे हो या फिर जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो, तब इसे पूरे खेत में बराबर बिखेर कर मिट्टी में मिला दे। यह खाद हमारी मिट्टी के लिए एक संपूर्ण भोजन की तरह काम करती है। रासायनिक खेती में जब फसलों में जड़ गलन या उकटा बीमारी आती है तो हम महंगे केमिकल डालते हैं। जैविक खेती में हम रसायनों की जगह एक मित्र फंगस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसे बाजार से लाकर सीधे खेत में नहीं डालना है, बल्कि इसका घर पर संवर्धन करना है, यानी इनकी संख्या बढ़ानी है। तरीका ध्यान से सुनिए और समझिए। बुआई से लगभग 7 से 10 दिन पहले 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लीजिए। इसे 50 किलो हल्की नमी वाली सड़ी हुई गोबर की खाद में अच्छे से मिला लीजिए। इस मिश्रण को अपने घर के किसी छायादार स्थान पर या पेड़ के नीचे रख दीजिए और ऊपर से जूट की बोरी यानी टाट की बोरी से ढक दीजिए। इस पर हल्का पानी छिड़कते रहे ताकि नमी बनी रहे। मात्र 1 हफ्ते के अंदर उस छाया में उस 1 किलो ट्राइकोडर्मा के करोड़ों अरबों मित्र फंगस पैदा हो जाएंगे। अब इस उपचारित खाद को बुआई से ठीक पहले आखिरी जुताई के समय अपने खेत में

0: मिला दीजिए। यह मित्र फंगस आपकी मिट्टी में फैल जाएगा और जैसे ही कोई हानिकारक फंगस आपकी फसल की जड़ पर हमला करने आएगा, यह उसे खाकर ख़त्म कर देगा। जो किसान भाई किन्नू के बाग लगा रखे हैं या जो नरमा बोने जा रहे हैं, उनके लिए यह ट्राइकोडर्मा किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। भाइयों, बुआई से पहले जब हम खेत में पहली बार पानी लगाते हैं, वह समय मिट्टी के सोए हुए जीवाणुओं को जगाने का सबसे उत्तम समय होता है। जैसे ही आप खेत में पानी छोड़े, उसके साथ प्रति बीघा 200 लीटर जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जरूर दें। इसके लिए आपको खेत के नाके पर या पानी की होद के पास एक प्लास्टिक का ड्रम रखना है। उसमें नीचे एक टोंटी लगा देनी है और उस टोंटी को उतना ही खोलना है जिससे वह घोल बूंद बूंद करके बहते हुए पानी में मिलता रहे। मई की इस भीषण गर्मी में जैसे ही मिट्टी को पानी और जीवामृत की खुराक मिलती है, मिट्टी के अंदर मौजूद मित्र बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों गुना बढ़ जाती है। ये जीवाणु मिट्टी के भीतर सालों से लोक पड़े हुए फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन को घोलना शुरू कर देते हैं, जिससे जब आप बीज बोएंगे तो पौधे की शुरुआती ग्रोथ इतनी शानदार और इतनी तेज होगी कि फसल लहलहा उठेगी। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल का आधार है। मिट्टी तैयार होने के बाद सही बीज का चुनाव व उसका जैविक उपचार करना है। जैविक खेती में हम जीएमओ बीज का उपयोग नहीं करते हैं। जैविक खेती में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम पारंपरिक देसी या प्रमाणित बीजों के ऐसे बीजों का चुनाव करें जो हमारे क्षेत्र के पानी और जलवायु के अनुकूल हों। कपास, ग्वार और मूंग के लिए अपने नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र या केवी के द्वारा सुझाई गई उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करें। बीज चुनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी काम आपको करना है, वह है जैविक बीजोपचार। 100 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए, बीजामृत बनाने के लिए 5 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम भुजा हुआ चूना, लगभग 20 लीटर पानी में इन सभी चीज़ों को एक प्लास्टिक की बाल्टी में अच्छे से मिलाकर एक रात यानी 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन आपका बीजा अमृत तैयार है। बीजों में बीजामृत के घोल की फुहार मारकर मिला लें, इसे छाया में सुखा दें। भाइयों, ग्वार और मूंग जैसी दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचारित करें। इससे पौधों को बाहर से यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरमे के बीज के लिए आप एजेक्टोबैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कपास के पौधे को कुदरती नाइट्रोजन देने में मदद करता है। हर सिंचाई के साथ प्रति बीघा 200 लीटर जीवामृत जरूर देना चाहिए। कीटों से बचाव के लिए हमें घर पर ही 5 किलो नीम की पत्तियां, 5 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गोबर को पानी में 2 दिन सड़ाकर नीमास्त्र तैयार कर लेना चाहिए, जो रस चूसने वाले कीड़ों को तुरंत रोक देता है। वहीं बड़े कीड़ों और सुंडियों के लिए आक, धतूरा, नीम जैसी 10 पत्तियों को गोमूत्र में सड़ाकर बनाया गया दशपर्णी अर्क सबसे अचूक हथियार साबित होता है। अगर फसल में फंगस या पीलापन दिखे तो 5 लीटर खट्टी छाछ को तांबे के टुकड़े के साथ 10 दिन रखकर छिड़कने से सारे रोग दूर हो जाते हैं और फसल में भरपूर कैल्शियम मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर हम इन तरीकों जैसे खेत की तैयारी, बीजोपचार व हर पानी के साथ जीवामृत देना, नीमास्त्र और खट्टी छाछ से फसल को सुरक्षित रखना, इन तरीकों को अपना लें तो हम मिट्टी को भी स्वस्थ रखेंगे और खेती का खर्च भी कम होगा। जैविक खेती मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इस खरीफ सीजन में इसे अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में जरूर आजमाएं।
1: भाई लोगों, सुनी वार्ता, विषय हो जैविक खेती और वार्ताकार है विश्वास शर्मा। भाई लोगों, खेती के सागे सागे आपा सहायक धंधा के रूप में पशुपालन भी करा, क्योंकि पशुपालन भी खेती के सागे ही जुड़ेड़ो धंधो है। और अपना कई पशुपालक भाई अच्छी अच्छी नस्ल का पशु पाल के अच्छो मुनाफो भी कमावे। पर भाई लोगों, पशुपालन ने बेहतर बनाने खातर आपने बहुत सी बातों को ध्यान रखना पड़े। पशुओं की निराचारी के बारे में, पशुओं की संतुलित आहार के बारे में और पशुओं की जरूरत और बांगे स्वास्थ्य की जानकारी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, जिसका फिल्म का नाम है डॉन। गीत अनजान का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोतों लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है झुक गया आसमां। गीत के बोल लिखे हैं हशरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। मजरू के लिखे गीत को संगीत से संवारा है एस डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज जोन AIR पर। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 1982 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म बगावत के कुछ फिल्मी गीत। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय और अमजद खान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोतों, इस फिल्म का निर्देशन रामानंद सागर ने किया। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म के सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा था और सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब एक और सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज की हमारी फिल्म है 1982 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म बगावत। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए महेंद्र कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म बगावत का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक की फिल्म से आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज की फिल्म है बगावत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इसी फिल्म का एक और प्यारा सा ये गीत।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में हमारी फिल्म थी 1982 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म बगावत। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय और अमजद खान। इस फिल्म का निर्देशन रामानंद सागर द्वारा किया गया था। फिल्म के सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा और सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उपविजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी। और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योग लिन डो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबीरिवाक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कहीं ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप 4 के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की 4 टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर ले तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले, तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स है।

0: हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें जगाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अश्विन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सधी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला उमरजई और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर 3rd विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने 2 ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
2: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
1: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हा युक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर मोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रही। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता के दूसरे

0: दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
1: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, इंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड इंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज पे फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही है अभी, गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
0: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महविश।
2: जी
0: महविश, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
2: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है।
0: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है। पुरुष हाई जंप से देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही हैं इस प्रतियोगिता से?
2: जी आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी है।
0: मैं भी ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रही थी?
2: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिरसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर IPL का अंतिम लीग मुकाबला

0: जा रही है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने

0: निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

0: 49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

राजस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों

0: Good night.
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं सोनू निगम।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज हमारे कलाकार हैं सोनू निगम। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम नेशनल साइंस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ।
1: कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर

0: आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया Sri Lal Mohan Bhattacharya is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Raag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे

0: महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy